पाए, जब तब संयम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सिओ, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजे पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दीजै डार। नानक जिस पिंजर

करे जो तिस पावै नानका कागो हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखी है कार्ज दे सवार सतगुर सच साखी है संता संग निधान अमृत चाखी है पै पंजन मेहरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है श्लोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार हौं बलिहारी तिन कहो जिंत आया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुर मिले उल्टी पई नवनिद खर्चियो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरन निज घर वसै निज थाए अनहद तुनी सद वजदे उनमन हर लिव लाए नानक हर भगत तिन्ना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हौं ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया हर पुछिया ढाडी सद कै केते अर्थ तू आया नितेवो दान दयाल प्रभ हर नाम त्याया हर दाता हर नाम जपाया नानक पैनाया सुध एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जियो का एक स्वान कह कर गावना जननी जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है मोर मोर कर अधिक लाड़ तार पिखत ही जमरा हसै ऐसा तैं जग परम लाया कैसे बुझे जा मोया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिखिया रास इत संगत नहीं चौमर नार मैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी इन बिद पव सागर तरना जा तिस पावै ता लागै पाओ परम पुलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत नाही मरना हुक्म पछाणता खसमै मिलना रहाओ दूजा श्री राग तरलोचन का माया मोह मन आ गलड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया कुटुंब देख बिकसै कमला ज्यों पर कर जो है कपट नराओ

मिल मेरे रमैया मैं लेह छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्तह न परवेसं। माया मोह ता बिसर गया, जात जियले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ। तिन कर दलो करन महाबली, तिन आगर लै मैं रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का, अचरज एक सन ओरे पंडिया। अब किश कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे। त्रिभुवन मेख ली लाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजै। जाकी दृष्ट नाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कलक कनक कर सिख पाया। तिसमै तार चो ऐत निर्मल, रसमै रसन चवाया। एक जो बात अनुबनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मैं एको जोगी, कहो कमन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सौ परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरिया कै घर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अरे नर

रेण संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिन सीख बोध्या भागी, सच घर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो, माज महला पंजवा विसर नाही ए वड़दाते, कर कृपा भगतन संगराते, दिन सरैन ज्यो तुद ते आई, एहो दान मुहे करना जियो, माटी अंधी सुरत समाई, सबके दिया पलिया जाई, आनंद बिनोद तोज तमासे, तुद पावे सो होना जियो, जिस दा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली शीतल पवना, सहज के रंग करना जियो।

तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संगमान लीना जियो, ज्यो बार को पीखी रिया गावे, ज्यो नेर तानो तान दे सुख पावे, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग एहो मन पीना जियो, ज्यो अंधार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा, मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया, हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु साई दीना जियो, माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडार नहरिया, अवर साध चक सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो, जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निदान तसे प्राप्त जे शब्द गुरु मन मूठा जियो, जिन हर रस पाया सो तृप्त अगाना, जिन हर साध पाया सो नाहि डोलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस सबत जिस मस्तक पा बीठा जियो, हर एक साथ आया वरसाने बहुतेरे तिस लग मुक्त पय कणहेरे, नाम निदाना गुरमुख पाईऐ कहो नानक विरली डीठा जियो, माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशिया रंग रावै जो गुरलागा पाई जियो, दर्शन पेखत पए पुनीता सगलो दारे पाई मीता, आगमा गोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो, जा को खोजे सर्वियो पाए वडभागी दर्शन को विरला पाए, ऊचा पारा गोचर थाना ओ मैल गुरु देखाई जियो, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त भया जिस दैव सेरा, गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सह समाई जियो, माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठत बैठत सोवत जागत हर त्याईया सगल अवरदा जियो, नाम औखद मोको साधु दिया किलब काटे निर्मल थिया, अनद भया निकसी सब पीरा सगल बिनासे दरदा जियो, जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा, सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे कौ डरदा जियो, जब ते साधु संगत पाए गुर पेड़ तहु गई बिलाए, सा सा सर गावे नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो, माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संगराता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकर ही काया हर जियो, काट सिरक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकर सब जाने ठाकर के सेवक हर रंग माने, जो किछ ठाकर का सो सेवक का, सेवक ठाकर ही संग जाहर जियो, अपने ठाकर जो पहराया बहुर ना लेखा पुछ बुलाया, ते सेवक है नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जियो, माज महला पंजवा सब किश घर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो, चिम चिम वरसा अमृत तारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा, आनंद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो, जन्म जन्म का विछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया, सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो, जल तरंग ज्यों जलै समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया,
कहो नानक परम कटे के वाड़ा, बहु न होइए जौला जियो। माज महला पंजवां, तिस कुरबाणी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना भणिया। वार वार जाई तिस विटाओ, जो मन तन तो द्यारा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चल, नैन निहाली तिस पुरख दयाल। मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुरमिल सो प्रभ ला दे जियो। सेवड भागी जिन तुम जाने, सब कै मद्दे अलिप्त निर्वाणे। साध कै संग उन पौ जल तरिया, सगल दूत उन साधे जियो। तिन की शरण भरिया मन मेरा, मान तान तद मोह अंधेरा। नाम दान दीजै नानक कहो, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होवा अस्थूली। तू जल निद तू फेन बुध बुधा, तुद बिन अवर ना पालिए जियो। तू सूत मणिए पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है। आद मद अंत प्रभ सोई, अवर ना कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्वाण रसिया रंग राता। अपने कर्तव्य आपे जाने, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पूरी नजर निहालिए जियो। माज महला पंजवा, सफल सो बाणी जित नाम वखाणी। गुर प्रसाद किने विर लै जानी, तन सो वेला जित हर गावत सुनना। आए ते परवाना जियो, से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा। से कर भले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले। हम बलतन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सा संग खिन माहे उधारे। किल विख काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दोए कर जोड़िक बिनो करी जय, कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै। नानक कौ प्रभ पै कृपाला, प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी।

संत रसन हर नाम वखाना, जल थल नीर भरे सर सुबर, बिरथा कोय न जाए जियो, दया तारी तिन सृजन हारे, जी जंत सगले प्रतपारे, मेहरवान किरपाल दयाला, सगले तृप्त अगाए जियो, वन त्रिण त्रिपावन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तसै अरादे, मन की आस पुजाए जियो, माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो, तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तो देव पाए, जिजत पाना तित तलाए, सब किश कीता तेरा होवै, नाही किश असाड़ा जियो, नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुरपूरे वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो, माज महला पंजवा, जी प्राण ब्रह्मन अधारा, भग जीवै गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवै, साध संग जन मरण मिटावै, आस मनोरथ पूर्ण होवै, भेटत गुरदर साया जियो, आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी, साधक सिद्ध ते आवै ज्ञानी, खुदी मिट्टी चूका पोलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए किरपाल स्वामी अपना, ना ओ नानक कर मैं आया जियो, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकरियत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जाना, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मन सगली खोवै, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो, प्रभ अपना सास सास सुमारो, एह मत गुर प्रसाद मन धारो, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो, सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पय निहाला जियो, माज महला पंजवा, हुक्मी वरसन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांस सह सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो, सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जियो, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस दाते आई, जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोख संतापे जियो, सास सास नानक सालाहे, सिमरत नाम काटे सफाहे, पूर्ण आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो, माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावै गुण अगम्या पारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याई है जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल बिख जावै, मन चिंदे से ही फल पावै, सिमर साहेब सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दिए जियो, नाम जपत सर्ब सुख पाई है, सब पौ बिनसै हर हर त्याई है, जिन सेव्या सो पार ग्रामी, कार्ज सगले थिए जियो।

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहे मेरा कड़कड़ अंतर वर्त नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाण जियो प्रभ मृणय की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास की है प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध स्याणप किशु ना जापै अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच तिहाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थनंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सदही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पलवन्या जीवन सफलत थाई।

माज महला पंजवा अथ तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तरे ओट तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंध न जागी, बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे, विन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है, जे सिमरत वार ने चल पाई है, नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सबाए, सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा, सच्चे मन पतिया मणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमती मन वसावने आ रहाओ। ना को मेरा हों किसकेरा, साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछोतावने आ। हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण, गुर कै शब्द नाम निशाण, सबना कादर लेखा सच्चै, छूटस नाम सुहावने आ। मनमुख पूला ठौर ना पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवने आ। सागत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवै जावे, लिखिया लेखना मेटे कोई, गुरमुख मुक्त करावने आ। पेयड़ पर जा तो नाही, झूठ विछुन्नी रोवे ताही, अवगण मुठी महल ना पाए, अवगण गुण बख्सावने आ। पेयड़ जन जाता प्यारा, गुरमुख बूझे तत विचारा, आवन जाना ठाकर हाए, सच्चा नाम समावने आ। गुरमुख बूझे कथ कहावे, सच्चे ठाकर साचो पावे, नानक सच कह बेनंती, सच मिले गुण गावने आ। माज महला तीजा कर पहला, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। हाँ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावने आ। हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ, गुरमती प्रगास हुआ जी, अंदर हर गुण गावने आ। रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए, तावत राखे ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावे, सहजे पद करावने आ, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिलैता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजावने आ। सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, आन दिन सदा रह रंगराता, दर सच्चा सोजी पावने आ। पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंदा मग न जाने, फिर आवन जावने आ। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हाँ मैं मेरा ठाक रहाया, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, बजरक पाड़ खुलावने आ। हाँ मैं मार मन वसाया, गुर चरनी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई, जिस बख्से तिस दे वड़ियाई, नानक नाम ते आए सदा तू, जम्मन मरण सवारने आ। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख होवे सोई बुझे, गुण कै गुणी समावणिया। हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया। जो सच लागे से अंदन जागे, दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ आप सुने तै आपे वेखै, जिसनो नदर करे सोई जन लेखै, आपे लाए लए सो लागै, गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी, पूरे करम मिलावणिया। पेयड़ तन अंदन सुती, कंत विसारी अवगण मुती,
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਪੇਈੜ ਐਸੂ ਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਕਿਲਬੇ ਕਾਟ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ ਬਿਨਾ ਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ

माया मोहे जोहे अजम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

गुरमुख नाचै हर से ती चितलावया रहाओ। गुरमुख जीवै मरै प्रवान आर जा ना शीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर सोभा पाए गुरमुख विचों आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे न लगै शरीर गुरमुख हो मैं चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागै गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख नाम मिलै वडियाई गुरमुख गुण गावै सोभा पाई। सदा आनंद रह दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अंदन शब्दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंदारा जमकाल गरठे करै पुकारा। आंदन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा मैं दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठाया प्याए। नानक नाम मिलै वडियाई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सब दिखाए।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वणजे सदा वापारी लाहा नाम सद पावणिया। आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै केई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा। हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणिया। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया। अंदन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले दे सजाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणिया। पेयड़ प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणिया। पेयड़

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवने ऐथे उथे तू है रखवाला मात गर्व मैं तुम ही पाला माया गन्ना पोहै तिन कौ रंग रते गुण गावने आ क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बने अवर न जानने आ जिस कहो तू प्रभु पया सहाई तिस तत्ती वाव न लगे काई तू साहेब सरण सुखदाता सतसंगत जब प्रगटावने आ तू ऊचा था हुआ पारा मोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकराई नानक बल बल जावने आ माज महला पंजवां घर दूजा नित नित दै संभालीए मूला मनो विसारीए रहाओ संता संगत पाईए जे जमकै पंथ न जाईए तोसा हर का नाम लै तेरे कुलै न लागे गाल जियो जो सवरन दे साईए नरक न सेई पाईए तत्ती वाव न लगई जिन मन उठा आए जियो सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने हर तन जिनी संजया सेई गंभीर पार जियो हर अम्यो रसायन पीवी है मोह डिठे जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूजो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना तने गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसद भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कार लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नानक तारियां नु जिता जन्म अपार जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवां घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे शरण आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेवया पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर जा पई ठरूरे करते किया तपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रता सच नाए हर वेखै सदा हजूरे बारह महा माज महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम तेन दुदै ते बाहरी किते ना आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइये विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी।

हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछतानी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे या गहाए आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असु सुखी वसंदियां।

मान आठ साठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुनी वड भागनी वर पाया हर राए मिल सहिया मंगल गा वही गीत गोविंदया लाए हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सवार निचल दितिया न जाए संसार सागर ते रखिया न बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निद चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवा दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर पिर बिन चैन न पाईए खोई डिठे सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देन कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैन नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरै पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंत ना पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज उगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंतन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानकेहो सुवाओ सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

मुंडम डिठ मैं नानक जग तू एका तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या काम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वडपुरख वडाती जो मन चेत तुद त्याय दे मेरे सच्चिया बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला जियो पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए।

क्या खादै क्या पैदा होए, जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास। क्या कपड़ क्या से सुखाली, की जय भोग बिलास। क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी। जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिया चखी है। सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवानी है। फुरमानी है कार खसम पठाया, तबलबाज विचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, एक री बदे पार एक ना ताखती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कर लया तन झाड़। दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे। नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बदा पाए। खुंडा अंदर रख के दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए तपै तैवल लाए। पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिया वेखो लोका आए। पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया। आपन रह मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया। मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी।

पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है, पढ़िया समर्थ पाठ। अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास, चौने सोय ना पाई है, चुन चुन खावे कास। लोहा मारन पाई है टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनास। महला पहला, तैहा कंचन तुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती तुटे पतार, पुत्ती गंड पवै संसार। राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखिया गंड पवै जा खाए, काला गंड नदियां मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल। बेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरतै संसार, मूर्ख गंड पवै मोह मार। नानक आखे हो बीचार, सिफती गंड पवै दरबार। पौड़ी, आपे कुदरत साज कै, आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। खरे खजाने पाई है खोटे सटिए बार वार, खोटे सची दरगह सुटिए किसे अगे करे पुकार। सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार, सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार। सची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आ बख्से करतार। सलोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया, मेर वद बाद साह अफजू खुदाए। एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साध का तरा। अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। ना दादे देहां दे आदमी, ना सबत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन्न पावन थिर ना कोई, एक तू ही महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। परंदे ना ग्रह जर, दरख्त आव्यास कर, देहंद सुई एक तुई महला पहला। नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सकै कोए, कला धरै हिरै सुई, एक तुई पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछाणिया। सच तेरा दरबार शब्द निसाणिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया। मनमुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया, विष्टा अंदर वास साधना जाणिया। विण नावें दुख पाए आवन जाणिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंह बाजा चरगा कुहियां, इन आखवाले

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पड़ पंडित बाद वखाण है पितर होंदी वस्त न जाण है हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओहो ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

किस जाचाओ नाही को थाओ, नानक गुरमत सहज समाओ, गौड़ी महला पहला। सतगुर मिलै सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगन पुर पाए। मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर सरना। रहाओ सतगुर मिलै ता दुबदा भागै, कमल बिगास मन हर प्रभ लागै। जीवत मरै महारस आगै, सतगुर मिलै सत संजम सूचा, गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा। कर्म मिलै जमका पौ मूचा, गुर मिलै मिल अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया, नानक होमै मार मिलाया। गौड़ी महला पहला, किरत पया नह मेटै कोए, क्या जाना क्या आगे होए। ज्योतिष पाना सोई हुआ, अवर न करने वाला दुआ, ना जाना।

नाही तुत भगत भंडार, किया गर्भ न आवै रास, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जी वाल।

गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड़ियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अनपै विसरे नाम समाया क्या डरिय डर डरे समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवार सांझ बयाल इत उत मनमुख बांधे काल अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरिया अवस्था सदगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसिया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली। बाजी यो संसारो, लब लोभ मुझ कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े। बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करै पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करै चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाकश लिया, ता मन भला पाया। हल

दाता एक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई। मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सुथाओ सच मन निर्मल होए। सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जो उचारे जाप। सब के साचा आपे आपै, कर्म होवै सत्संग मिलाए। हर गुण गावै बै सुथाए, रहाओ जलो ए जेहवा दूजै पाए। हर रसना चाखै फीका आलाए, बिन बूजे तन मन फीका होए। बिन नामै दुखिया चलिया रोए, रसना हर रस चाखिया सह सुभाए। गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हम मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर पावे। मंतन राता नाम सुहावे रहाओ। एक गावे एक भगत करे, नाम ना पावे बिन असने। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा उतार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच टपे बहुत दुख पावे। नचे टपे भगत ना होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए। बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे दे वड्याई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैंगल मिकदारा, गुर अंकस मार जीवालन हारा। मन या साध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए। गुरमुखे हो मन लिया सवार, हम मैं विचों तजे विकार। जो तुर राखिया नु मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुख आंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भगती आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे विकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ा दिन चार है, हर हर लिख पाया सोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै, साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेईए पिर वसै कहो किद बिद पाईए, आप निरंजन अलख है आपे मिलाईए रहाओ। आपे ही प्रभ देहे मातु हर नाम ते आई है, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है। हों मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाइए, सब आपे आवरदा आपे नाए लाइए। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान आने, सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया, हर तत् बिचारा मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईए संत जना, जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती, गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ। हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है

तारी, ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे, हरे आपे वेखै विकसै आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे। हरे आपे सारंग अमृत धारा, हर अमृत आप ही आवनहारा, हरे आप करे आपे निस्तारा। हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा, हरे आपे गुरमति निस्तारा, हरे आपे नानक पावै पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावै, दे रास रे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जागाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया।

ज्यों जन्नी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए तन खाड़ दे कर भोग बिलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसैया। जन की उपमा तुझै वडैया रहाओ, मंदिर घर आनंद हर, हर जस मन पावै सब रस मीठे मुख लगै, जा हर गुण गावै, हर जन परिवार सधार है, एक ही कुली सब जगत छुड़ावै, जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई, हर जी तेरे तू मरतदा हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई, लाला हट विहाजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है हर की वड्याई, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, किरसाणी किरसान करे लोचै जियो लाए, हल जोतै उद्यम करे मेरा पुत धी खाए, त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिडाए, मैं मूर्ख की गत की जय मेरे राम, गुर सतगुर सेवा हर लाए हम काम रहाओ, लै तुरे सौदागरी सौदागर तावै, तन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै, त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावै, बिकसन चै हटवाणिया बै हट कमाए, मो झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए, एहो माया मोह कुटुंब है पाए दूजै फास, गुरमति

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे हर सब माया कह बंदे कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सबल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्स तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत ना आवै तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लह हर भावै हम अपराधी राखे गुरसंगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावै तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब बिस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सत गुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पर उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भये जन्म जन्म के किलवख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए। ओह बेला का चीत न आवे बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर हमरी भूम कौन का लै पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा करने हरना बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। आनक जतन नहीं होत छुटारा बहु से आण पे अगल पारा। हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का उला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जस आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। बहुत दर्ब कर माना या गाना अनक रूप देखने पतियाना। पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी ओ बिनसै ओ पसमै ठेरी। बिन हर भजन देखो बिल्लाते त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े तिसके पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिना है आप

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी प्रमता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस को करे बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागै सेव, हम ते कछु न होवै देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच वखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखां प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सच धर्मा। सर्व निदान

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधु, चखत होए रह बिस्मादु। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसने अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मध्य बस्त्या पार, इस ही पीतर सुनियत साहो। कौन बापारी जा कहुआ विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय। कवन सो जुगत जित कर पी जय,

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिनस रह करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मन तन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहूं ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का हो ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखानो। आगाध बोध किस्मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्यादि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उड़ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निकटना आवे माई, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सर्वन सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लहर रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, सा संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुखड़े राट है, जिस सिमरत जम किशु नाम कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़त हो मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं हमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुरपैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सुख्या नंद असहज सुख्या नंद निदान, रखन हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै परम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी गुआरे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोला वै राम मन में लागै साहि ध्यान मिटै क्ले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावै कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावै सर्वनिदान गुरु ते पावै आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा जानी ऊपर प्रभय दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वनिदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म सिव लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहलना बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिले वड़ियाई गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रवचित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पौ काहे का माने हर बिसरत काहे सुख जाने रहाओ जिन तारे बहुत तरनिया गास जा की जोत जी प्रगास जा की बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपा होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरनी पाहे कोट कलंक खिरमै।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच्छ पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवा, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सगल रोग का बिनस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै, गौड़ी महला पंजवा, भले दिन

कर कृपा प्रबंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट। कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जसपी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा। दुख दर्द प्रमता का भागा, हर तन को वापारी पूरा। जसै नवाजे सो जन सूरा, रहाओ जा को पए कृपाल गुसाई। से जन लागे गुर की पाई, सुख सहज सांत आनंदा। जब जब जीवे परमानंदा, नाम रास साध संखाटी। कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत संभट कलेश। चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लखबारी। अमृत रस पीवो प्रप्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा। जब जब जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए। साध कै संग किलबिख सब धोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए। तिस्यों आलस क्यों बने माए, खसम बिसार आन कम लागे। कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा। दास सलाम करत कत सोभा, अमृत रस खावे खान पान। जिन दिए तसै न जाने सुवान,

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे।

तिसनो जो है दूत धर्म राय, तिस्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बोजूना रहाओ। सागत की ऐसी है रीत, जो कुछ करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन धारिया, सोई ठाकर मनो बिसारिया। बदे बिकार लिखे बहु कागर, नान कुदर कृपा सुख सागर, पार ब्रह्म तेरी सरनाए, बंधन काटता है हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पादीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाते बिरथा कोय ना होए। रहाओ अपने स्वायर दल तारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया, रसना गिद्दी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा, गौड़ी महला।

कर कृपा भेटे गुर सोई, तित बल रोग ना व्यापै कोई। राम रमण तरन पै सागर, सरन सूर फारे जमकागर रहाओ। सतगुर मंत्र दियो हर नाम, एह असर पूर्ण पै काम। जप तप संजम पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पै सहाई। मान मोह खोए गुर भरम, पेख नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा, बिखैराज ते अंदला भारी। दुख लागै राम नाम चितारी, तेरे दास को तुही वड्याई। माया मगन नरक ले जाई रहाओ। रोग ग्रस्त चितारे नाओ, बिख माते का ठौर ना ठाओ। चरण कमर स्यों लागी प्रीत, आन सुखा नहीं आवै चीत। सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी, मिल नानक हरे अंतरजामी। गौड़ी महला पंजवा, आठ पहर संगी बटवारे। कर कृपा प्रभु ले निवारे, ऐसा हरस रमो सब कोए। सर्व कला पूर्ण प्रभु सोए रहाओ। महातपत सागर संसार, प्रभु खिन मैं पारो तारण हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाए, सिमरत नाम मुक्त फल पाए। उगत सियानप इस्ते कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़ भागी हर की।

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाईए मान। गौड़ी महला पंजवां, जल थल महियल पूर्ण हरमीत। प्रांबिन से गाए गुणनीत, ऊठत सोवत हर संग पहरुआ। जाके सिमरन जमने डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभु निवास। सगल दुख का होया नास, आशा मान तान तन एक।

हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते, पै पंजन प्रभ माना बसाही। डरपत डरपत जन बहुत जाही। रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय समाल। घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग। मंत्र राता राम कै रंग। रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबख सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसा।

विप्त तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही, हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वड़पागी निश्चल थान, जह जपिया प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक कौ मिलया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवां, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै, साधु संग सिमर गोपाल, बिना मैं झूठा तन माल, रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग मैं आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान, कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी तां का मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों सागत नहीं संग, ओह बिखई ओस राम को रंग, रहाओ मन असवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पचारे नारी। बैल कौ नेत्रा पाए दुहावै, गऊ चर सिंह पाछे पावै, गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावै बिन पूंजी, नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवां, सामत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट, रहाओ। सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सब ते ऊच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल। गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लए।

पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ। अहम बुद्धमन पूर्थ दाई साध तूर कर शुद्ध मंजाई। अनक जला जे तो वह देही मैल ना उतरै शुद्ध ना देही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा जीवन पदवी हर के दास जिन मिलिया तुम प्रगास। हर का सिमरन सुन मन कानी सुख पावे हर द्वार पुरानी। रहाओ आठ पहर त्याई है गोपाल नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा सांत पई गुरु गोविंद पाई ता पाबिन से मेरे भाई। रहाओ राम नाम।

गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रवे अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ, सीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा। तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईए, रसना राम नाम जस कहिए रहाओ। तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवा। तू है मसलत तू है नाल, तू है राखै सार समाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाकै, आठ पैर मन हर को जापै, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करै फुरमान, आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा। सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा। तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट, बिन कर तूती मुक्त ना पाई है,

नानक मांगत नाम आधारे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानको, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल ते आगी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे। भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा,

करो, दास दासन की अनक पांत करो नेहोरा। तुला तहार तोले सुख सगले, बिन हर दर्स सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा। आनंद सुख पेट तहर नानक, जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता, मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। एक बस बिन पंच दुहेले, ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यो पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज पया प्रम खिन मैं नाठा। मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै। सतगुर मजै बतायो रहाओ, जात का देखो ताता तुम ही। मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती, जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे, ता सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निध नाम निधान इकठाई, तो बाहर कैठे जायो। एक कनक अनक भांत साजी, बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है, इव तत्त तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा, औद कटै दिन सुरै नारे। मन गुरमल का इसवारे, रहाओ करो बेनंती। सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला। इहां खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पी आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी। झांको आए सोई विहा जाओ, हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास ही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा, राख पिता प्रभ मेरे। मोहे निर

बोले, वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते, अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते। भ्रम पौ काट किए नह केवल, जब ते हम मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा, साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मिरिया। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कमनरी जावै तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ। सुर्ग पयाल मृत भू मंडल, सर्व समानो एक ओही, शिव शिव कर तो सगल कर जोरै, सर्व माया ठाकर तेरी दोही। पतित पावन ठाकर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान त्यान नानक वड्याई, संत तेरे स्यों गाल गलोही। गौड़ी महला पंजवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ। अनक जन्म बजोनी भ्रमया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है, देहो दर्श हर राया। सोई होवा जो तिस पाणा, अवरना किन्हीं कीता, तुमरे पाणे परम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे, कृपा निदयाला, राख लेहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतपाला। जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो, साध संगत कै पाछ कर कृपा, तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बाछै।

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बेदारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोहे मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग पोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चल्यो है मूड नंग। चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार, गुरबोइथ पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर भेट परम्पो खोया। कहो नानक एक ते आया।

रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चा कर लै लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले गौड़ी महला पंजवा जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है वड़े पाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है या गै तिल नहीं मानी है। आहू बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा कर नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ। करन करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोबन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तू ही तान। गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधिय संत संग हर मन वसै परमोह पौसा दिए रहाओ। वेद प्राण सिमरत बने सब ऊच बरायत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिर गोविंद लोक नहीं जन्म मरै बल बुद्ध सियान पहुं मैं रही हर साध सरन नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइय नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याई है रहाओ। संत संग हर मन वसै दुख दर्दा नेरा प्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है। जां कौ गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्न ते नानक कौ प्रमया कर मेरे मंत्र वसै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा रसना जपिया एक नाम इहां सुख आनंद कना आगे जी कै संग काम रहाओ। कटिए तेरा अहं रोग तू गुर प्रसाद कर राजयोग हर रस जिन जन चाखिया ताकि तृष्णा लाथिया हर विश्राम निद पाया सो बौर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुर दिया नानक ता का पौ गया। गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरै राम नाम ताहू को पीर साध संत मिल हर रवै से गुणी गहीर रहाओ। जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नवनिद सिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किश नाही ता कै कमी करने हर पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा गर्भ बड़ो मूल इतनो रह नहीं गहो कितनो रहाओ। बेबर्जित बेद संतना उवाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो। हरन परन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग कृपा निद मैं दितनो।

तो ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज केलो अनद खेलो रहे फेर पय मेल नानक गुरशब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयानु रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल होम जग तीर्थ किए बिचहु मैं बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ तौ लो दुखन परे जाओ कृपाल गुर पूरा पेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हों किए ते बंद परे जो साधु कर्म

जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि सुमाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो, इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराद, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, तत्ती वाओ ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दै गुर, गुर सच्चा सृजनहार, गुर तुठै सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा। रहाओ राम गोबिंद जपिंदिया, होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोबिंद मनो विसारी है, जिस सिमरत दुख जाहे।

मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे से तीरतियां मिलिया निथावें थाओ। रहाओ होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए, विण परमेसर जो करे फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साध का तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए कै पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नावा। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना, जन नानक हो खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसे एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई। रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसे सो सगल बिनासे, ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथिया रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया में कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावै, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सब को हिरलीना तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै। माया मोह महासंकट बानो ता सो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहु ना लावै। नानक मुक्ताहे तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए जे नहन तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो एह बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा। अहन से औद कट नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै। और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ

मानस देहे बहुर नह पावे कशु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवै मन हास्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया गया।

दृष्ट भई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या पूजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पही ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी गुआरे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुर ते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बोचते विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम बिरुदो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुवे खेलन काची सारी, संपो संची पै विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामै सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरे री

ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए। गुरमुख दिसै सै सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दोखं मुक्त भय प्रभु रूप नारेखं। जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख।

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तारे पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रह सो निरप होए, जैसा सेवै तैसो होए, नर नह केवल निरपौ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, साचै शब्द उदर निशाणे, शब्द मरै तिस निज कर वासा, आवै ना जावै चूकै आसा, गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मिलै उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा, सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा, जै जै देखो तैं तैं साचा, बिन बूझे झगड़त जग काचा, गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किसको देख करो अनपूजा, संत हेत प्रभ तरपवन धारे, आत्म चीनै सो तत् बिचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ता के दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है।

देवै दुर्मत हर नाकस दुराचारी प्रभ नारायण गर प्रहारी प्रहलादो धारे कृपा धारी भूलो रावण मुगदया चेत लुकी लंका लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट मैं खासा हर नाक छले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दै संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जान्या क्यों सुख पावै परम पुलान्या एक तिल भूले बहुर पछतान्या कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीन्या अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहराओ।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्या गै कवरे, पाए मिलाए सच सच है सच रे, ऐसा राम पग जन होई, हर गुण गाय मिले मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जा रै, सो उबरे गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना, मिर्ग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावै, वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुरसबदी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणै दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए।

गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया। हम हर राखे गुर

आए नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल ना जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अपियो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते सुख कही है। गुरमत चालो निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले। पीवे अमृत तत् विरोले, सतगुर दीख्या दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्रह्मणी। इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। निहचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया। जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई। नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला। राम नाम

मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल, आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल। मन

मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अष्टपदिया एको अंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कड़कड़ जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी। रहाओ जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इसमें लै फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ता ते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किस्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सबके सूझया। जब एहो तावै माया अर्थी, न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जवला, पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सदगुर मिलयो, मन मंदिर में दीपक जलयो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किसे कै, आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा, सा सालाहनो नानक हर रंगा। गौड़ी महला पंजवा, गुरसेवा ते नामे लागा। तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसके हृदय रविया सोए। मन तन सीतन निचल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जा जपत हम मैं पागे। जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै। जास जपत कोट मिटै अपराध, जास जपत हर होवै साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, भवन न छोड़ै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जप सो सहज निवास। जास जपते अग्न पोहत, जास जपते काल ना जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला धुलाता। जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने। जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारै। पंच जना स्यों संग निवारै, दस इंद्री कर रखै वास। ताकै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताकै होए। जां को दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है।

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दोराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जा कै सहज मन भया आनंद, ता कौ भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, ता कै संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, ता कै कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जा कै सहज भया सो जाने, नानक दास ता कै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टर, कवन शब्द जे दुर्मत हर रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी

गौड़ी महला पंजवां गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुरमू गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ रहाओ गुर कै बचन सुन रसन मखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर कै बचन कीनो राज जोग गुर कै संग तरिया सब लोग गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर कै बचन पाया नाउ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिया जम की फासा गुर कै बचन जागया मेरा कर्म नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर कौ सिमराओ सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास रहाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर की रेण नित मज्जन करो जन्म जन्म की हम मैं मलहराओ तिस गुर कौ चूला वो पाखा महायगन ते हाथ दे रखा तिस गुर कै गृह ढोवो पानी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर कै गृह

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगति मैल न जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रहन सुख सुती जियो। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, आन दिन दुख निवारे। अंतर महल पर रावे कामन गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे। नानक

राम नाम वा पाराग में अपारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो, घर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए, नामो बीजै नामो जमै नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिराजियो, जा चाख है चित लाए, रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम ते आए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए। नामे उपजे नामे बरसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाईऐ आपे लै लवाए। एहे वडाणी चाकरी पिराजियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किनै सुख ना पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए, परम पुलाए ओह क्यों कर सुख पाए। चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुरसबदी चित लाए। मन मुख मुक्त गवार पिराजियो, शब्द मन नाम वसाए। माया का परम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए, जिसनो हर जियो करे।

होय संत, जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो, ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुखवादो, दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है, जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है, काल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आराधो, बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो, सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया, भगत वछल पुरख पूर्ण मन आचिंदया पाईऐ, तम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईऐ, सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया, बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया, चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी, करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी, प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्या पारो, सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो, रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी, बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी, गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला, विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला, प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किसै, काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण कहला, बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला, गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करेहा, मनाए लय हर कंतै, मान त्याग कर भगत ठगौरी मोहै साधु मंतै, सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंतै, नानक जरा मरण पै नरक निवारै पुनीत करै तिस जनतै, सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाईऐ, सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाईऐ, काल कलेस मिटै भ्रम नासै मन चिंधिया फल पाईऐ, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईऐ, सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागन पेखो थान सवाए, खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट पागी माए, सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे, मेरा मंतन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया, प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवा, सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद सहोदरा, गुरदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरदेव मंत निरोदरा, गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा, गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा, गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा, गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा।

नानक एको रव रया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साध सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपै सोनो आपै सुख आसनो, आपै सुनो तो आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखम आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण।

ओवं गुरमुखियो अकारा एकै सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल भांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू भांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा। सलोक सेई साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सौ सतपुरख ते पिन ना को सौ सरन भरै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसै परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहूं को जापत सो साध।

तंदे कहां ब्यापै ताहूं, जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं, जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान, मन अठ मिलो ना कोए, कहो नानक कृपा पही, भगत ज्ञानी सोए। पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बात, अनक जुगत शास्त्र कर पात, ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो, कहत सुनत कह जोग ना हो। ज्ञानी रहे तो आज्ञा दृढ़ जा कह, उसन सीत समसर सब ता कह, ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट में, बिन बूझे फस टोर, नानक गुरमुख सो बुझ जाके पाग मथोर। पौड़ी या युग में एक को आया, जन्मत मोयो मोनी माया, गर्भ कुंट में उर तब करते, सास सास स्मृत प्रव रहते, उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवन हार मन बिसराना, तारो कृपा जसै गुसाई, एत उत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म, आज्ञा पिन ना कोए, आवन जाना तेह मिटै, नानक जेहे मन सोए। पौड़ी एउ जी बहुत गर्व वासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रैगुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने, ए साजन कश कहो उपाया, जाते तरो बिखम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट ना माए। सलोक किरत कमावन सो ब्या सुभ, कीने तिन प्रभ आप, पासे अपन हाँ हाँ करै, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक है आप करावन हारा, आपै पापुन बिस्थारा, या जुग जिजत आपै लायो, सो सो पायो जो आप दिवायो, उवा का अंत न जाने को, जो जो करै सूफन हो, एक है ते सगला बिस्थारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद, कुसम रंग बिख सोर, नानक तेह सरनी परो, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा, तह तह बंधन पाए, जेह बिद कतू न छूटिए, सकते उकमाहे, हाँ हाँ करते कर मरत, ताको पारिया फार, प्रीत नहीं जो नाम सेओ, तऊ एऊ कर्म बेकार। बादे जम की जेवरी, मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे ने बुझे, सो प्रभ सधू संग, लेखे गणत।

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना अरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुभ देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते

होनहार हो सदयाया, वकंत न काहूं पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊं जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिया, जास रसनो हर हर जस भनिया। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जां को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जबत मन होए आनंद, बिनसै दूजा पाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूरा उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंठ चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

गण काले सब दिवस सास नह बढ़न कटन तिलसार जीवन लोरे पर मोह नानक तेउ गवार पौड़ी गंगा ग्रासे काल तेह जो सागत प्रभ कीन अनक जोन जन्म मर आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सात प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो सबदुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बौचितराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

जा कौ साध कृपाल साधु संगतौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै शब्द पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ श्रम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न काल्यो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहं बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जामै जा मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवै जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाना रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए होमे अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस। अना को जानै अपनो एकै टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रहै सो प्रभ पुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहु संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबित कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिरको नहीं काय पसारो पाव अनक।

देंदे तोट न आवई अगणत परे पंडार। दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा। दोष नहीं काहू कौ मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता। दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे। श्लोक धर जिया रे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस। नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी। धद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास। तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास। तन साचा तेऊ सच साहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा। तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया। गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग। गुरपुरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी। नन्ना नरक भरै ते नाही, जाकै मंतन नाम बसाही। नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते। नन्ना कारना होता तां कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निद निदान हर अमृत पूरे, तैं बाजे नानक अनहतूरे। श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार। नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी। पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु। पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जा कहो राखो आप गुसाई। पात साहो छत्र सिर सोऊ, नानक दूसरे अवर ना को। श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत। नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी। फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया। फिरया ओसर चरै न हाथा, नाम जपो तो कटिया फासा। फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई। करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल रहो नानक बेचारे। श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल। सुख संपै बहु भोग रस ना।

पौड़ी। रारा रेन हो सब जा की, ताजा मान छुटे तिरिबा की, रण दरगह तो सी जय पाई, जो गुरमुख राम नाम लेवलाई। रहत रहत रह जाए बेकारा, गुरपुर के शब्द अपारा, राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर की नींदा ते। श्लोक लालच झूठ बिखै ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू, दुख दर्द ते मिटै खनाहू, नाम औखद जिरदै हतावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हारे औखद सब कट है भाई, गुरपूरे बिन बिदना बनाई, गुरपूरे संयम कर दिया, नानक तो फिर दुख ना थिया। श्लोक वासदेव सर्वत्र मैं, ऊनक तू ठाए, अंतर बाहर संग है, नानक काए दुराए। पौड़ी वबा वैर न करिए काहू, घटकटे अंतर ब्रह्म समाहू, वासदेव जल थल मैं रविया, गुरप्रसाद विरले ही गविया। वैर विरोध मिटे ते मन ते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हां हां करत बिहानिया, साकत मुकदया जान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु, कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत नाम आराधु, रूडो जे बस्यो रिद माही, ओवा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत सगत गावारा, जे ही है अंबुद बिकारा, अड़ाड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट कहो, उक्त सियान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन परे अवहारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे, सरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मंतन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत परानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, भावै खसम ता उवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता। असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राए, उकत सियानप सगल त्याग, नानक ले सुमाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना, हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना, सहस पात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चलै तुहारै साथी, साध सेवा लावै जे आपै, नानक तां को दुख ना व्यापै। सरो श्लोक हर हर मुख ते बोलना, मन उठै सुख होए, नानक सब मैं रवरया, थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कटकट सगल कै, पुर रहे भगवान, होवते आए सद सदीव, दुख भंजन गुर ज्ञान, हाँ छुटकै होए आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्म मरण, संत संग प्रताप, हित कर नाम दृढ़ दयाला, संत संग होत कृपाला, ओरै कछु न किन्हू किया, नानक सब कुछ प्राप्त हुआ। श्लोक लेखै कतै न छूटिया, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्शले, नानक पार उतार। पौड़ी लून हरामी गुने गार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जन सुख दिए, ताहे न जानत तत, लाहा माया कारण, दे दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ, निमखना मने बसाए। लालच झूठ बेकार मोह, या संपै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए, तुद पावै ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। श्लोक
ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਭਗਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਤ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरत ननाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रत।

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास्त पीसर थीवे। अग्न माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तौपी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया टरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरत

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राख नहारिया पार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्तर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लोबावे जे प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जब

जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभता कै। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे हे। जे प्रसाद या पूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वाल सकी जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह है जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान साध कै संग बुझै प्रभनेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही हौताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग मैल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुख तहरै साध कै संग नरक प्रहरै
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

दूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लगे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुना, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै करसदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। और तारै जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान,
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸੋ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਸ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋ

पसरो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे।

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कौ हिरै, कई कोट पर

आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बह जोन परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै, तृण समान का संग न जावै, बहु लश्कर मानख उपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै, आपस कहो जो पला कहावै, तसे पलाई निकट न आवै, सर्व की रेण जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इस कहो सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज, नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसै प्राप्त होए, करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू कै संग, बूझे देखे करे बबेक, आपे एक आपे अनेक, मरे ना बिनसे आवे ना जाए, नानक सदी रहा सुमाए, आप उपदेसे समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो अपन विस्थार, सब कश उसका ओह करने हार, उसते पिन कहो किश होए, थान थन अंतरे कैसोए, अपने चल तो

संत के दोखी का उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवरना राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तिल खे

भक्त जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो है पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृटेता पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगमे अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डर अपन चलते आप करने हार नानक ठाकर अगमय पार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शर शिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तै किसे भूख कवन त्रिपतावै करण करावण करण हार नानक करते का नाह सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद गतेब कहा कूचीन जब अपने आप उतार तब सगन अब सगन कहा विचार है जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिये चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाला शेदा भेद।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब ऊपर होवत कृपालो, अपने कर्तव्य जान आप, अंतर जामी रहो ब्याप, प्रतपाल जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

चिंता जाए मिटे अहंकार, ते जन को कोई ना पहुंचन हार। सिर उपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट न आवत काल। अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कटकट व्याप रहा भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तेन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंड दै दिशे समाहे। तिसते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससी अर सूर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हूं डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुणे अमोल। सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहे स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने सो बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्थार, तिस भावै ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस पावै तस लय मिलाए। कवन निगट कवन कहिए दूर, आपे आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जाका तना, अपन जस आप ही सुना। आमन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सबके मध अलिप्तो रह, जो कुछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता ले समाए। इस्ते होए सो नाही बुरा, ओरै कहो किने कश करा। आप भला करतूत अत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच। ता की गत मित कही ना जाए, दूसर होए ता सोजी पाए। तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत राम रतन मंतन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत कौ तुरिया पावै कोए नानक संत निर्मल पहे जिनमन वसिया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगार मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहौ करत विहाय जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर शोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, धरने आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिरसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिया, सिमरो हर के चरण, पतो धरण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राए, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए। हलत पलत मुखी उजला, नै पो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसै रवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए। एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए। नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावै कोए। महला चौथा, हम मैं माया सब विख है, नित जग तोटा संसार। लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतरै, हर अमृत हर ओर धार। सब कार्य तिन के सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा धार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई। तुदनो सब ते आईंदी, सब लगै तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई। गुरमुखा नू फल पाईंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध। मनमुख अहंकार सलाह दे, हौ मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी। नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवै लाए सुनाया। तो जेवड दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरा मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हम मैं रोग है, प्रम पूले मनमुख दुर्जना। नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मंतन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास। जन नानक हर सरनागति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरखिया गम है, किस नाल तू वड़ी है। तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख पर गड़ी है। तू सच्चा सब सदा खसम है, सबदू तू चढ़ी है। तू करै सो सच्चे होए सी, ता कायत कड़ी है। सलोक महला चौथा, मैं मन तन प्रेम प्रम का, अठे पहर लगान। जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत ब्रह्म की, ज्यो बोलन तवै सुहान। नानक हरे आपे जानदा, जिन लाई प्रीत पेरन। पौड़ी तू करता आपा पुल है, पुलन विच नाही। तू करै सो सच्चे भला है, गुरशब्द बुझाही। तू करण कारण समर्थ है, दूजा को नाही। तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आही। सब जी तेरे तू सब सदा, तू सब छडाही। सलोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश राय, अखी तार लगन। गुर तुठै सज्जन मिलया, जन नानक सुख सवन। महला चौथा,
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੋਂ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਚਲਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦੂ ਕਿਛ ਕੁਜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ ਲਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ, ਸੋ ਮੂੜਿਆ ਜਾਣੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਸੋ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੁ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ, ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹਉ ਮੈਂ ਭਾਰ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਤਿਸਨੋ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਹੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ, ਤਿਸਨੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਆਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜੰਤੋ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ। ਸਭ ਆਪੇ ਆ ਵਰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਸਭ ਕਿਲਵ ਕੱਟੇ ਤਾਸ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਦਰ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਭਾਵੈ। ਕੂੜ ਯਾਰ ਪਿਛਾਹਾ ਸੱਟੀਆਂ, ਕੂੜ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਕੂੜ ਯਾਰੀਆਂ, ਕੂੜ ਯਾਰ ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਜਾਵੈ। ਸੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਓਏ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚੀ ਪੈਨ ਆਏ। ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ, ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸੁਆਵ ਗੀਰ ਸਭ ਉਗੜ ਆਏ। ਓਏ ਜਿਹਾ ਚਿਤਵੈ ਨਿਤ, ਤਿਹਾ ਪਾਇਨ। ਓਏ ਤੇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਈਏ ਵਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ ਸ੍ਰੀ ਖਸਮ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਵਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਤ ਲੱਗੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੜੈ ਕਰ ਕਰ ਮੰਗਾਏ। ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੁਲੰਮਾ ਭਾਜ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀਐ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਵਰਨ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ। ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿਨ ਸਿਉਂ ਕਰੀ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਸਭ ਜਲਾਏ। ਔਗਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰੀ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਔਗਣ ਮੇਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਲਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਵੰਦਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਮਤ ਸੁ ਸੰਜਮ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਤਾਣ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਰੱਖ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਪੂਜੇ ਗੁਰਮੂਰਤ, ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਤਿਸ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਵੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਸ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੈ।
नरक घोर मोहे काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे, जा हर हर नाम ते आवे, हर बाता आख सुनाए नानक, हर करते ए वै पावे। महला चौथा, पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दईये उसदे गल पाया, ओ गल फरोसी करे बहु तेरी, उसदा बोलिया किसे ना पाया, ओह कर कर हंडे जो रन दुहागण, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै, उसदा पास छड गुर पास बह जाया, जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आग सुनाए, पूरे गुर का बचन उपर आया, गुर सिखा वड्याई पावे गुरपुरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी, सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लै जे सतगुर टिके, सो सतगुर जे साहित्य आईंदा, सच सच्चा सतगुर एके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे, तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके, ओए बोले किसे ना भावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। सलोक महला चौथा, हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया, गुरमुख बख्श जमाइयां नो, मन मुखी मूल गवाया, सब को बीजे अपने भले नो, हर भावै सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फले अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करतै मार कढ़ाया, किरसाणी जमी भाउ कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम आराध्या, आप तरिया सब जगत।

जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै ना संदे, वैर करै निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे। जो जो संत सरापिया से फिरै भवंदे, पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु त्याईंदा वड्डी वड्याई, तुस जित्ती पूरै सतगुरु कटै नाही एक तिल किसै दी कटाई। सच साहेब सतगुरु कै वल है ता चख चख मरै सब लोक आई। निंदकां के मोह काले करे हर करता है आप वधाई। ज्यों ज्यों निंदक निंद करै त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई। जन नानक हर यारा दया तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा। सतगुर सेती गणत जे रखै हलत पलत सब तिसका गया। नित चहिया पाए चगू सुट्टे चखदा चखदा चढ़ पया। नित उपाव करै माया तन कारण अगला तन पी उड गया। क्या ओ खटे क्या ओ खावै जिस अंदर से सा दुख पया। निर्वैर नाल जे वैर रचाए सब पाप जगतै का तिन सिर लया। उस अगे पिछे टोई नाही जिस अंदर निंदा मोहे अंब पया। जे सोयने नो ओह हथ पाए ता खेहू से तीर रल गया। जे गुर की सरनी फिर ओ आवे ता पिछले औगुण बख्श लया। जन नानक अंदर नाम ते आया हर सिमरत किलविख पाप गया। पौड़ी। तू है सच्चा सच तू सबदू उपर तू दीबान। जो तुद साहित्य आए दे सा सेवन सच्चे तेरा मान। ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिनी गुरमुख सा लाहिया सच शब्द निशान। सच जे सच्चे सेव दे तिन वारी सद कुरबान। श्लोक महला चौथा। तुर मारे पूरे सतगुरु से ही हुण सतगुर मारे। जे मेलन नो बहु तेरा लोची है ना देई मिलन करतारे। सत संगत टोई ना लहन वे संगत गुर विचारे। कोई जाए मिले हुण ओ नानो तिस मारे जम जंदारे। गुर बाबे फिटके से फटे गुर अंगद कीते कूड़ियारे। गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हथ एना विचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्ज सब सवारे। जो इच्छा सो फल पाए सी पुत हन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे। सब निदान सतगुरु विच जिस अंदर हरि उर धारे। सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे। जन नानक मांगे तूड तेन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा। जिन को आप दे

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक ओ सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तिस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठ के आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर बन जी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थे तन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजै सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा काट संगोया। जन नानक नाम ते आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड भागियां सोहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राए। अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेव कड्डे खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रविया इको ओत पोत। एक देखिया एक मन्या, इको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस दिन के हृदय है, जिन हर वसिया मन माहे। हर दरगह ते मुख उजले, तिन कौ सब देखन जाए। जिन निरपौ नाम ते आया, तिन कौ पौ कोई नाहे। हर उत्तम तिनी सरेविया, जिन कौ तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पहनाई है, जिन हर मुठा मन माहे। ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों, दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक कहो हर मेल जन, तिन वे

मंत्र बताय हर सिखाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता।

ताया प्या गणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बणत है तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलता है सतगुर नो मिले सो हर मिले नाही किसै परतै सलोक महला चौथा एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाइए चित क्यों सास ग्रास विसारी है बहद्या उठद्या नित

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वाल छल कर चत कड दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारियां।

तुस दिता पूरा सतगुरु हर तन सच अखुट सब आंदे से मिट गए जमका पौ छुट काम क्रोध बुरे आईया संग साधु टुट विण सचे दूजा सेवंदे होए मरसन बुट नानक कौ गुर बख्शिया नामै संग जुट सलोक महला चौथा तपा ना होवै अंदरों लोभी नित माया नो फिरै जजमालिया अगों दे सद्या सत्तै दी भिख्या लै नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ लै रह गालिया जिथे थोड़ा धन वेखै तिथे तपा पिटै नाही तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया पाई एहो तपा ना होवी बगला है बैसाध जना विचारिया सत पुरख की तपा निंदा करै संसार की उस्तति विच होवै एत दोखै तपा दईए मारिया महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा सब गया तपे का कालिया बाहर बह पंचा विच तपा सदाए अंदर बह तपा पाप कमाए हर अंदर ला

जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धनी है। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया, विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै, शब्द ना करै विचार। शुद्ध मत करते सब हिर लई, बोलन सब विकार, दिते कते ना संतोखी है, अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मन मुखा नालों टुटी भली, जिन माया मोह।

जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै ना संदे, वैर करन निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे। जो जो संत सरापिया से फिरै भवंदे, पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवां। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया, पन्नन कर्ण समरथ, प्रभ सदा संभालै मित्र तू, दुख सबाया लथ। महला पंजवां। खुदियावंत न जानई, लाज को लाज कबोल, नानक मांगै नाम हर, कर कृपा संजोग। पौड़ी। जेवे हे कर्म कमावंदा, तेवे हे फलते, चबे तत्ता लोह सार, विच संगै पलते। कत गलावा चालिया, तिन दूत अमल ते, काई आसना पुनिया, नित परमल हिरते। किया ना जाने आकिरत कान, विच जोनी फिरते। सबे तेरा निखुटिया सो, हिर लिया स्तरते, विजन कले ना देवता ता लया करते। जो जो करते अहम मेयो, चढ़ धरती पड़ते। श्लोक महला तीजा। गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हर परोए। पवित पावन परम बिचारी, जे ओस मिलै तिस पार उतारी। अंतर हर नाम बासना समाणी, हर दर सोभा महा उत्तम बाणी। जे पुरख सुनै सो होए निहाल, नानक सतगुर मिलै पाया नाम धन माल। महला चौथा। सतगुर के जी की सार ना जापै, के पूरे सतगुर भावै। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै, जो सिखा नो लोचै सो गुर खुशी आवै। सतगुर आखै सो कार कमावन, सो जप कमावै। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावै, विण सतगुर के हुक्मै जे गुर सिखा पासो कम कराया लोड़े। तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवै, गुर सतगुर अगे को जियो लाए कालै। तिस अगे गुर सिख कार कमावै, जे ठगी आवै ठगी उठ जाए। तिस नेड़ै गुर सिख मूल ना आवै, ब्रह्म विचार नानक आख सुनावै। जेवन सतगुर के मन मन्ने, कम कराए सो जंत महा दुख पावै। पौड़ी। तू सच्चा साहब अत वड्डा, तोहे जेवड तू वड़ वड्डे। जिस तू मिलै सो तुद मिलै, तू आपे बख्श लै लेखा छड्डे। जिसनो तू आप मिलाएंदा, सो सतगुर सेवे मन गड़ गड्डे। तू सच्चा साहब सच तू, सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यो पावै त्यों रख तू सच्चिया, नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां। राय कमाल दी मोई दी की वार, की धुन उपर गावनी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां। हर हर नाम जो जन जपै, सो आया परवान। तिस जन कै बलिहारण, जिन जपया प्रभ निर्वाण। जन्म मरण दुख कटिया, हर भेटिया पुरख सुजान। संत संग सागर तरे, जन नानक सच्चा तान। महला पंजवां। पलके उठ पराहुणा, मेरा कर आवो। पाओ पखाला तिसके, मन तन नित पावो। नाम सुने नाम संग्रह, नामे लिव लावो। गृह तान सब पवित्र होए, हर के गुण गावो। हर नाम वापारी नानका, वडभागी पावो। पौड़ी। जो तुद पावै सो भला, सच तेरा भाणा। तू समय एक वरतदा, समय समाणा। थान थन अंतर रव रहया, जी अंदर जाना। साध संग मिल पाई है, मन सच्चे पाणा। नानक प्रभ शरणागति, सत सत कुरबाणा। सलोक महला पंजवां। चेताई ता चेत।
साहिब सच्चा सो धनी, नानक सतगुर सेव चढ़ बोइथ पौजल पार पाओ महला पंजवां। वाउ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार, नानक नाल ना चलनी जल बल होए शार। पौड़ी से उबरे जगै विच जो सच्चा रखे, मोह डिठै तिनकै जीवी है हर अमृत चखे। काम क्रोध लो मोह संसा दा पखे, कर किरपा प्रभ अपनी हर आप रखे। नानक चलत ना जापनी को सकै ना लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिनस सुहावड़ा, जित प्रभ आवै चित। जित दिन विसरै पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों, सब किश जिसकै हाथ। कुमित्रा से ही कांडी है, एक वेखना चलै साथ। पौड़ी अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई। जिस सिमरत सुख पाई है, सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भुख रह ना काई। सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म। नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए, ऊना काई जाए। नानक लद्दा तिन सुवाओ, जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दमनी चमत्कार, त्यों वरतारा जग खे। वत सुहावी साए, नानक नाउ जपंदो तिस्तनी। पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब, किने कीम ना जानी। जो जन पेटै साध संग, सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख, एह रतना खाणी। मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी। तोसा दिचै सच नाम, नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल ना उतरै भुख। नानक सच्चे नाम बिनु, किसे ना लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ, जिन्नी सच ना लद्या। नानक से साबास, जिन्नी गुरमल एक पछाणिया। पौड़ी जिथै बैसन साध जन, सो थान सुहंदा। ओए सेवन समर्थ अपना, बिनसै सब मंदा। पत ते उदाहरण पार ब्रह्म, संत वेद कहंदा। भगत वछल तेरा बिरद है, जो जुग वर्तंदा। नानक जाचै एक नाम, मन तन पावंदा। श्लोक महला पंजवा। चिड़ी चोहकी पहु फुटी, वगन बहुत तरंग। अचरज रूप संतन रचे, नानक नामै रंग। महला पंजवा। घर मंदर खुशियां तही, जह तू आवै चित। दुनिया कियां वड़ियाईयां, नानक सब को मित। पौड़ी हर तन सच्ची रास है, किने विर लै जाता। तिसे प्राप्त पाए रहो, जिस दे विधाता। मन तन पीतर मौलिया, हर रंग जन राता। साध संग गुण गाया, सब दुख है खाता। नानक सोई जीविया, जिन एक पछाता। श्लोक महला पंजवा। खखड़ियां सोहावियां, लगड़ियां अतकंठ। ब्रह विछोड़ा तनी स्यो, नानक सह सह गंठ। महला पंजवा। विसारें दे मर गए, मर पे ना सकै मूल। वे मुख होए राम ते, जो तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख दान प्रभ एक है, अवनासी सुनिया। जलथल मैयल पूरिया, घट घट हर भणिया। ऊच नीच सब एक समान, कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो, सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै जिस नाम, तिन हर रंग मणिया। श्लोक महला पंजवा। जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत। धन से ही नानका, पूर्ण सोई संत। महला पंजवा।
ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲ ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ ਪੌੜੀ ਤਿਸੈ ਸਿਰੇ ਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਜਿਸਦੈ ਨਾਉ ਪੱਲੈ ਐਥੈ ਰਹੋ ਸੁਹੇਲਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਘਰ ਬੰਧੋ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੜ ਥੰਮ ਅਹੱਲੈ ਓਟ ਲਹਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲੈ ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਦਰ ਗੈ ਮੱਲੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਪੌੜੀ ਉਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਐ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈ ਐ ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਮਰਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਰਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲੈ ਝਰਨੇ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਐ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟੈ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਉ ਨਾਮ ਪੌੜੀ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਲੱਦਾ ਸਾਦਾ ਸਰਨੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁਟੈ ਬੱਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਬਨਾਸੀਐ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਦੱਦਾ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਪੜ ਬੁਝ ਸਮੱਦਾ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਣੀ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਦਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ

कहो कबीर बहु काए त्रिजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै। कबीर जी गौड़ी क्या जाप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे भाव है दूजा। अरे जन मन माधो स्यो लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है रहाओ। पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की करही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रगराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिनते सब उत्पाती। कहरे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन मत खोए रहाओ। जाओ तू ब्राह्मण ब्रह्म नहीं जाया, तो आन बाट का है नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। गौड़ी कबीर जी अंधकार सो कवे ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती में जियो समाना, मुए मर्म को का कर जाना। हंसा सरवर काल शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। गौड़ी कबीर जी जोत की जात, जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। कमन सो कार जो निरपो कही है, पौ प जाए अपै होए रही है रहाओ। तट तीर्थ नहीं मन पतियाए, चार आचार रहे उर जाए। पाप पुन दो एक समान, निज कर पारस तजो गुणयान। कबीर निर्गुण नाम ना रोस, इस पर चाय परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी जो जान परमित पर मन जाना, बात नहीं बैकुंठ समाना। ना जाना बैकुंठ कहाही, जान जान सब कह तहाही रहाओ। कहन कहावन ने पतियाई है, तो मन माने जाते हम जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग हुए नहीं चरण निवास। कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैने देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्ट तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तो की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जिया वनहारा रहाओ। आ देही परमल मैं कंदा, तां सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज पर है मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन ग्रहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परिवार। रे नर नाम चौड़ कत बोड़ी, हर स्यो तोड़ बिखिया संग जोड़ी रहाओ। सुर नर दा दे लागी आग, निकट नीर पस पी वसना झाग। चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। गौड़ी कबीर जी जिहे कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना पई महतारी। जह नर राम भगत ने सादी, जन्मत कसना मोह अपराधी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कैसे कुबज करूप। गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का नाओ, तिनके सद बलिहार जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरे मन पावै रहाओ। जिह कट राम रया परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुवै मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। ओवा को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जव मिले आई, आनंद माते अंदर जाई। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। गौड़ी कबीर जी मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कवन से थापी। कवन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ, मन मद सूदन त्रिपवन दे ओ। गौड़ी कबीर जी ओए जो

सूर चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधिया, मोह कै फाद काल सर संध्या, रहाओ कटी ना कटे टूट न जाई, सास आपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार लग

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबक माराओ। कहत कबीर भले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम तां लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, नामै जोगते।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर।

वर प्रसाद अगल पहियवर है ना तरथा बेगन ना रहाओ। निवर दूर दूर फो निवर जिन जैसा कर मान्या अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जान्या। तेरी निर्गुण कथा काय स्यो कही है ऐसा कोई बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया तै उत्पत पर लो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाध दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही रात दिन सतै नाही जल नहीं पवन पावक फो नाही सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सतसंगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे पवन पूंजी परगासे ओ तृष्णा गुण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे ओ। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ। काम क्रोध द्वय पहे जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान निबेरे टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंचपदा पेवकड़ै दिन चार है साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना। कहो डडिया बांधै धन खड़ी पाहू कर आए मुकलाऊ आए रहाओ। ओहो जो ओहो जे दिसै खूड़ी कौन लाज बहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे तां सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है देखो बिचारी एसनो क्यों आखिए क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली चित बंद ना धीरा हर की चरनी लाग रहो पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा अवरना दूजा पाई रुंडत मुंडत एक है सबदी एक है सिद्ध पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा जा पै जाओ आप छुटकावनो ते बांधे बहु फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी एह बिद बिसरी तब ही पंडित गुणी सूर हम दाते एक है बड़ा मही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चूके इन बिद मान।

हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहां किश नाही पाई तत् नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गा।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजमो अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गहयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न ना दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबन अरसुत दारा पेखन कौ जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चौदे ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन कौ मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी

सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कहे कबीर एक नीम ओसारी, खिरमा बिनस जाए हंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै, इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर ना ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछी है, डरिया।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास हो जारा। नौकर दे

माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, सेवसन काद जास गुन गावे तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना, कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन अखरी कबीर जियो की, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जह बोल तै मन न रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेट ताहे ना माना, ओवंकार लख जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बेहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लखे जाओ कोई दूर न परे फंक विचार है ता फल फंक सब तन फार है।

मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिलमावे, मगन पया ते सो सच पावे, मम्मा मन स्यो काज है, मन सादे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कहे कबीरा, मनसा मिलिया ना कोए, एहो मन शक्ति एहो मन सीओ, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जाओ उन मन रहे, तो तीन लोक की बात कहे, यैया जाओ जाने तो दुर्मत हानो, कर बस काया गाओ, रण रूतो पाजे नहीं, सूरो थारो नाओ, रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया, एहरा छाडे ओ रस आवा, ओ रस पिया एह रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे ले मल्लावे, अंत ना जाए परम सच पावे, आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे, तो अले लह लह चरण समावे, ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार, बल बल जे बिसन तना जस गावे, बिसन मिले सब ही सच।

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पव जल तरत न लावे बारा, ससा सो सह सही सवार, सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रियो कंत कहावा, हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तब है मनमाना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई, ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापै बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे, खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है, पंडित लोगे कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार, जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिति कबीर जी की, श्लोक पंद्रह थिति सात वार, कह कबीर उर्वार ना पार, साधक सिद्ध लखे जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ, थिति अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत् निजसार, चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मलो, हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ, परवा प्रीतम करो बिचारो, घट में खेल अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए, द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास,

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

कवन कर्म ते छूटी है, जे सादे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ता बोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै परम फास, प्रेम

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित पै सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाय तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सा साहेब।

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हम मैं माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई पीख को पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंध, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवा ले जिया, जय पावै तै राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जा जा चो नाओ, गुरप्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ, बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विण नावै होर कर्म ना पाल, पूजा

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिल ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवी रहना। दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाहे। गुर दीखिया ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार। हौ पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवै। मन अठ कीचै अंत विगोवै रहाओ। मन मुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लहा किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला। चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंच रासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जागे हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जागे हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहा ओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन।

अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हौ मैं खोए करे सिंगार तव कामन सेज रवै पतार। तव नानक कंत मन भावै छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ। आसा महला पहला पेव कड़ै तन खरी

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो वंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जायनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतिया दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देस गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरा नाम रते दरवेश पए

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगा।

मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंधावे कामण श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले।

जाए। ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रह थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिक त्रिक जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम देवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हून माया मल तारी, विण गुण जन्म मोए अहंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मस्त तत् कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा, रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड़ नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवे हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर अस्कर साई, हर हर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। जन्म ना मरै ना आवै ना जाए, हर सेती ओरै समाए। आसा महला पंजवां, निज भगती सीलवंती नार। रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसै सो ग्रह सोभावंता। गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सुकरणी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज पर थाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता कै साथ। तिचर कंतबो फिरै उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया। गुरयाणी घर मैं ता सर्ब सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगुण स्वरूप। इच पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जेठानी। सब परवार है माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ। धन सो ग्रे हो जित प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाए। आसा महला पंजवां, मता करो सो पकन ना देई। सील संयम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावै। गृह बसन ना देई वख वख परमावै। घर की नायक कर वास ना देवै, जतन करो और जाए परे वै रहाओ। तुर की पेजी आई अमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर। तड़ तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास, पढ़ था के सिमृत वेद अभ्यास। जह बैसों तह नाले बैसै, सगल भवन में सबल परवेसै। होछी शरण पया रहन ना पाई, कहो मीता हो कै पह जाई। सुन उपदेश सदगुर पै आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वसिया गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक पय अचिंता। कर मेरा एह नायक हमारी, एह अमर हम गुर की ए दरबारी। रहाओ दूजा आसा महला पंजवां, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। द्वितीये मता दोय मानख पहुंचावो। तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मोहे सुख पाया। रहाओ सतगुर मौका दियो आ उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किश करी सो तेरा तान, तू मेरी ओर तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तेरे सेवक किसकी कान, सख्त पूला फरै बेबान। तेरी वड़ियाई कही ना जाए, जह कह राख लह गल लाए। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ राखी पैज वजी वाधाई। आसा महला पंजवां, परदेस जाग सब देखो आया। वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्लै यानी। देख रतने मन लपटानी, सावा पारी द्वारे आए। वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साहे पठाया साहे पास। अमोल रतने अमोला रास, विष्ट सोभाई पाया मीत। सौदा मिलिया निश्चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ ना पानी। सहज विहाजी सहज लै जानी, सत कै खटिया दुख नहीं पाया। सही सलामत कर लै आया, मिलिया लाहा पै आनंद। तन सा पूरे बख्शिंद, एहो सौदा गुरमुख किने विर लै पाया। सहली खेप नानक लै आया। आसा महला पंजवां, गुण अवगन मेरो कछ ना बिचारो। न देखियो रूप रंग सिंगारो, चज आचार किश बिद नहीं जानी। बहा पकर परे से जयानी, सुन बो सखी कंत हमारो। की अलो खसमाना, कर मस्तक धार राख्यो कर अपना। क्या जाने हो लोका जाना। रहाओ
सुहाग हमारो अब हुण सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया परण सोबा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो परै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवे बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिरे हलकाए, निंदा करे सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बामण

मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुर सबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए। जन्म दोख परे मेरे पछ है, अब पकड़े।

हर हर राय, नाम तेरा जब जीवै नानक, ओत पोत मेरा संग सहाय। आसा महला पंजवा, अरड़ावै बिललावै निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै, नाले लै सधावै, अनहोंदा अजगर भार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै, सो नानक आख सुनावै, भगत जना कौसदा आनंद है हर।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मैं लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टे चाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, माना रह कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको परे मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन पई तब अंत न जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुखे अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माही दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा सा हो। गुर कृपा ते एह मत आवै, जन नानक हर कै अंक समावै। आसा महला पंजवा, प्रभ होए कृपालता एहो मन लाई। सतगुर सेव सवै फल पाई, मन क्यों बैराग।

ऐसा हरतन संचिया भाई, पाहे न जल जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो न जाई रहाओ, तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रया अगाए, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस धन ते सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लिखे का लहना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा महला पंजवा, जैसे किरसान बोवे किरसानी, काची पाकी बाड़ परानी, जो जन्मे सो जानो मुआ, गोविंद भगत असर है थिया रहाओ, दिन ते सर

जागे। कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां, नौ नित तेरा।

हो। जो तू करे सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोम नहारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

साथ पूरा गुरपूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवां गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागै नाओ रहाओ त्रिपत गावन सच नाए अठ सठ मजन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बिबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवां बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकू मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अगन का सागर।

हर आज मिलक जोबन ग्रह शोभा, रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी, काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने, नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, और आगे आसा कर शेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया, जां कौ टेक तुम्हारी स्वामी, तां कौ नाही चिंता, जां कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया, आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवै पराई, अपना कीता पावै, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच ना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखे, ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही, खसम एवै भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई, आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहा काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए, गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत योग ना पिछाने, उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे, तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल कुंगुरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ, प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै, कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मंतन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावै, जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे,
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ ਰੇ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇ ਹਰ ਕੂਕਰ ਤਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿਆ ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਰੇ ਬਿਨ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ ਥੇਵਾ ਅਚਰ ਜਲਾਇਆ ਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਚੂਪੀ ਨਿਰਨੋ ਪਾਇਆ ਰੇ ਮਾਲ ਦੁਲੀਚੈ ਬੈਠੀ ਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੈਣ ਦੇ ਖਾਲਨ ਧਾਇਆ ਰੇ ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪੀ ਆਇਆ ਰਸਕ ਰਸਕ ਬਿਗਸਾਨਾ ਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਅਪਰਾ ਬਿਰਦ ਸੁਮਾਰਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਤ ਪਿਤ ਨਿਆਈ ਬਾਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਿਆ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਕਾਢ ਲੀਏ ਮਹਾਂ ਭਵਜਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਐ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਈ ਐ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਹ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਛਿਜੈ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਛ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆਪੈ ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਗਾਠੇ ਅੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭੈ ਸਹਾਈ ਏਤੋ ਤਰਖ ਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੀਤ ਹੀ ਧਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਬਲਿਹਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਉ ਕਿਹਾ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿੱਸਾ ਲਾਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਬਾਬਾ ਬਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰੱਖਿਆ

सब जग बौराया, ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किसे आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है, सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काई तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिख्या पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आग्या ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप महाकोरते बहा पकर गुर काढ लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहियै, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिस को बेपना को भख है। ओहो सुख ओहा वड़ियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंगमाणी। तुद आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साह संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कै संग तरओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट भया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया। गुर प्रसाद पहे जनमुक्ते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणी।

रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्यो री। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्यो री। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समर्थ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवां महला पंजवा। लाल चोलना तै तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सुवरण हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसल तुमोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी भ्रम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साज नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यों करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिनो सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइये पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन माया।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाई है, अस्थान गुरु ते पाई है, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तहै दुख डेरा, हुक्म बूझै सोई परवान, साध सब जा का निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला वर्यंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन एतुत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

प्रभु की प्रीत सद सोभावंत, प्रभु की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभु की प्रीत सगलो उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, भूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता हुए गए सुहा ऊंचे मंदिर महल अरानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कनेरी जो मिली है तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी अगर उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ै नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पहु चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगशार संत रहत सुनो मेरे भाई ओवा की महिमा कथन ना जाई रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम अनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्र जा कह एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग कट नहारा दुख दूर करन जी के दातारा सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली ताका संग बांछै सुरदेव अमोग दर्श सफल जा की सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजै गुणतास आसा महला पंजवा सगल सुख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुणगाम महापवित्र साधका संग जिस पेड़ लागे प्रभ रंग गुर प्रसाद ओ आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकि गत में तो कहन ना जावे रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम प्रगट्यो सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकी पगरेन जाको पेट्यो हर हर राय ताकी गत में तो कथन ना जाए आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ मोहे गरीब को लिहोर लाए नानक आए पै सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उदके सुनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़ै नाही बहर बहर तिस लागै पाई साल ग्राम हमारे

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नो दान। आसा महला पंजवा पंच पदा, जेह पैंडै लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरै साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आस

की तप तहरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अवनासी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसर स्वामी इहा उहा कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भौ ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सहे सुमाही। जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साइय साचा सोई। सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुंडित गई है। दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख। कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनाशे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वडे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला सोजन हो वासदा निहाला आसा महला पंजवा सतगुर सच

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सद कुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सत सार, ओह आद जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जप जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया। रहाओ कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम धन गुण गाओ लाभ पूरा गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ता के वडपागा, ओहो सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा। रहाओ दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाईए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाईए मन माहे निधाना, जां कहो तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहेब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया। रहाओ वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जी ठहरंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी। रहाओ परता कह सो मानिए, एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिए एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेट हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जो मन के परमा, भ्रम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे। रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ। रहाओ सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु भावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिनसे प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोज आवो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगमय अगमय अगाध बोध, कीमत परै ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभु ठाकर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के ब्योहारी। अवर बिसारी बिसारी, नाम दान गुरपूरै दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभु पावो संतरे निर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्स पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवां महला पंजवां। जिसनो तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा, पुत्र कलत्र गृह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करै है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी, एक राम भजन लै लाहा रहाओ। जैसे बस्त्र देह उडाने, दिन दोए चार पोराहा। पीत ऊपरे केतक ताई है, अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा। आवगे आग्या पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चालै लेखे बैसै, लेखे लैंदा साहा। सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवां, अपुष्ट बाते पई सिजरी, दूत दुष्ट सजनई। अंधकार मैरतन प्रगासियो, मलीन बुद्ध हशनई। जो कृपा गोबिंद पई, सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे किरपन को कोई ना जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पी खपतो नाही, साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने, अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो, जन नानक हर शरणई।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे। आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरे चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोए शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भागे नाही मोहकम फौज ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक अरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरण समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जन त्यावे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण सरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिया नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियान पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवां, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग, हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय, होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को, यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश नाहे, ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाए। जन्म जन्म के किलविख काटे, मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां, अगमै गोचर दर्श तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी, सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड जे मुग्ध होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब सृष्ट तरता, सब मैरिया समाए, धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिए, कल युग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िए किसै थाए। हर जियो सोई करे, जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़, नानक दान मांगे, अपने संतां देह हर दर्श। राग आसा महला पंजवां, कर तेरवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते, तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवां, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखैर असमाते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सतसंगे, नानक शरण आहे, आसा महला पंजवां, ते पदे ओहा प्रेम पिरी रहाओ। कनक माणक गज मोतियन लालन, नै ना नहीं राजन पागन, हुक्म ना साधन, किश किश ना चाही, चरणन शरणन संतन बंदन, सुखो सुख पाही, नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री। आसा महला पंजवां, गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, इतै उतै कट कट कट कट, तू ही मोहेना, कारण करना तारण तरना, एकै एकै सोहेना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोए ना। आसा महला पंजवां, हर हर नामया मोला, ओहो सह सोहेला रहाओ, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओहो अगे अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हरका चोला। आसा महला पंजवां, अपनी भगत निबाहे, ठाकर आयो आहे रहाओ, नाम पदार्थ होए सकारथ, हृदय

आओ कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा को बिखम गार तोरे आस प्यास तो हो मोह परम ही ते हो रह रहाओ काम क्रोध लोभ मान एह ब्या दिशोरे संत संग नाम रंग गुण गोविंद गावो अंदिनो प्रभ त्यावो परम पीत जीत मिटावो निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो खिनहू जोग ताबो पूजा खिनहू परमायो खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवा कर सतारवा आसावरी एको अंकार सतगुर प्रसाद गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां गहड्यो मूड़ नर हां अन ना उपाव कर हां तौ निकस सरण पैरी सखी थिर थिर चित थिर हां बन ग्रह समसर हां अंतर एक पिर हां बाहर अनेक तर हां राजन योग कर हां कहो नानक लोग या लोगीरी सखी आसावरी महला पंजवा मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां दृढ़ संत मंत ज्ञान हां सेवा गुर चरान हां तो मिलिया गुर कृपान में।

तो चूकी सगल कान लैनो जिस मथान हां पै पाव को पार प्राण हां निज कर तिस थान हां हर रस रसै मान हां लाथी तिस पुखान हां नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनी हां जपिया सह तुनी हां साधु रसन पनी हां शूटन बिद सुनी हां पाइय वडपुनी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनी हां सर्व का प्रभ धनी हां दुलभ कल दुनी हां दुख बिनासनी हां प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हां अलख अपेविय हां ता स्यो प्रीत कर हां बिनस ना जाए मर हां गुरते जाने हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निधान लहो हां सुख समाई है मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सब को तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वा रस जो बिदे हां ता को सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मूह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराद सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सरे हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर ना सुजे मूह हां करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पात्रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतर्गत बुझे हां सबके सबके तिस सुझे हां पत तो उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जा स्यो रच रहे हां सब को तज गए हां सुपना ज्यो पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन मैं मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहु दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कारथ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
उत्तर आप घट सरवरण आवै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धारया सब ठावरे रहाओ सच व्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरमर मैलन धोवै जय स्यों राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव शीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थन मुरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावा देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योत सुभावै सोफन होए सुन पारथर नानक कह बिचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूझे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साच धनी जग आए बिनासा छूट सप्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमती एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जमकी त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सतगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुर सब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत राखै ठाकर हाए सिख संगत कर मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो ना कहया जाई या कथ कथो न कीमत पाई सब दुख तेरे सुख रजाई सब दुख मेटे सच नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझै ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला तिर भवन सूजै आप गवावै बाणी बुझै सच समावै शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन मान्या ऐसा सुरत वखान कथनी बदनी पड़ पड़ पार लेखा संखा लेखा पार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरना हुक्म पछाण रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल बांदा छूटै नाम समाल गुर सुखदाता अवर ना पाल हालत पालत निभी तुद नाल शब्द मरै ता एक लिवलाए अचर चरै ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन ना मसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब थापी थापो थाप सर्व निरंतर आपे आप किसे ना पूछै पूछै बख्से आप तू पुर सागर मानक हीर तू निर्मल सचगुणी गहीर

विचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे हंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोए जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजै बिन सह पत खोए गुरमुख होवे बूझै सोए महंगो मोल पारिया फार अटल छल गुरमती धार पाए मिलै पावे पैकार नानक नीच कह विचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिलर होवे हमे जाए शब्द मल धोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन पूजे सगली पत खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ मुए कौ रोवे दुखोए सो रोवे जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवन मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हम बलिहारी सदगुरु चरना गुर बोहिथ शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नामै सूतक जग शोत दुरमत बिन सै क्या कह रोत जन मुवे बिन पग सरोत मुवे कहो सच रोवे मीत त्रैगुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सोचीत तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहुसंख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे पी आपो पाए थापो थाप सृष्टि उपाई ज्योति तू जात शब्द विचार मिल नहीं प्रात सूतक अगन पख जा खाए सूतक जल थल सभी खाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुर प्रसादी हर रस पी जय राग आसा महला पहला आप विचारे सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुरमान मनते मन तीरा ऐसा सहो सराफी करे साची नजर एक लिवतर रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साजरता पैकार सिमत सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कह कहाए गुरते वाट महल कर पाए कंचन काया ज्योता नूप तिर पवन देवा सगर स्वरूप मैं सोतन पल्ले साचा खूट पंच तीन नवचार समावे तारण गगन कल तार रहावे बाहर जा तो उल्ट परावे मूर्ख होए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कया बूजे बेका माता जग सों लूजे उत्तम संगति उत्तम होवे गुण कौतावे अवगुण धोवे बिन गुर सेवे सहज ना होवे हीरा नाम जिवे हर लाल मन मोती है तिसका माल नानक परख नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख मैली मैल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भक्ति विचारी गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ अह निस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुक्म पछान साचा हरख नाही ते सोग अमृत ज्ञान मारस भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सोई टाहे ओ सारे हुक्म समावे हुक्मे वरतै ज्योत पावे गुर बिन पूरा कोई न पावे बालक बिरद ना सुरत प्राण पर जोगन बूढ़े अभमान बिन नामे क्या लैस निदान जिसका अंतन सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे सेवट भागे नान गुर की चरणी लागे आसा

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला सा साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता मेरा प्रभ लाए ता को लागे। हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख महला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर बीचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मलो अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पेले। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रव्या पै। मन बैरागी हो मैं त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत रख। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद अंत त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत को चरण निवासा नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लेख देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मनमाही तुम समसर अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोतो कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हो मैं डन सहे राजा मंगे दान। बंधन सबदा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विक।

कहो नानको सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा संता की जात एको अंकार सतगुरु प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे अंत ना काहू जाए हर जिनी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए। अंचल गहया साध का नानक पैव सागर पार पराए जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेट हर राए। सुंदर सुगड़ सुजान प्रा मेरा जीवन दर्स दिखाए जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए। जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागों पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कह न जाए। साची प्रीत ना टुटे प्यारे जो जुग रही समाए जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारायण है प्यारे माते सहि सुभाए सब तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए। तू दाता जिया सबना का तेरा दिता पैर खाए सुख दुख तेरी आ गया प्यारे दूजी नहीं जाए। जो तू करावे सो करी प्यारे अवर किश कर ना जाए। दिन रहन सब सुहावने प्यारे जे जपिए हर नाओ साची साई कार कमावनी प्यारे तुर मस्तक लेख लिखाए। एको आप वर्तदा प्यारे कट कर रहा समाए संसार कूप ते उधर लै प्यारे नानक हर शरण आए। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एको अंकार सतगुर प्रसाद। सस्य सोए सिरठ जिन साजी सबना सहव एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिन का सफल पया। मन काहे पूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़िया रहाओ। ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई इना अखरा मैं जो गुरमुख बूझे तेसर लेख न होई। ऊड़े उपमा ता की कीजै जा कांत ना पाया सेवा करे सही फल पावे जिनी सच कमाया। गंगे ज्ञान बुझे जे कोई पढ़िया पंडित सोई सर्ब जिया मैं एको जाने ताहो मैं कह ना कोई। कक्के केस पुंडर जब हुए विणस

जम मग बादा खाहे चोटा शब्द बिन बेता लिया सच कह नानक चेतरे मनो मरै पवरा कालिया मेरे जियाड़िया परदेसिया कित पवै जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की फासै जमजाले राम मछली विछुनी नैन रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर स्यों छोड़ मनो अंदेसिया सच कह नानक चेतरे मन जियड़िया परदेसिया नदिया वहा विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस्परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सतगुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के परम पूले पचै मुगदिया चेतिया हर नाम भगत नारदै साचा से अंत ताही रुनिया सच कह नानक शब्द साचै मेल चिरी विछुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर पहला हम करे साचा सोहला साचा शब्द सुहाया राम तन पिर मेल पया प्रभया मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द सिंगारी सच सवारी सदा रावे रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सवारी सफल्यो जन्म सबाया दूजड़े कामन परम पुली हर वर ना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मन मुख एयाणी औ गुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख पिर विकसी अंदर हो सरसी सच्चै शब्द सुभाए नानक मिण नावे कामन परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए पिर संग कामन जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने सच्चा शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके पेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चा शब्द मिलाई सातन मन अंध पया हर जियो मेल प्यारे राम सात नहर कै रस रसी गुर कै शब्दया पारे राम शब्दया पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसे से सुहावी जा पिर रावी मिल प्रीत में अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याईय सोहेलड़ा जुगचारे नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कार्ज सारे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर तीजा साजन मेरे प्रीतमा तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो भगत करो तुम सह केरी जो सह प्यारे पावे अपना पाना तुम करो ता फिर सह खुशी ना आवे भगत पाव एह मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे कह नानक जिस करे कृपा सो हर भक्ति चितलावे मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे हर सोहिला तिन सद सदा जो हर गुण गावे कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहु सब किस जाने जल थल महियले को सोई गुरमुख हुकम पछाणे जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे एव कह नानक सो बैरागी अंधन हर लिव लावे जह जह मन तू तामदा तह तह हर तेरे नाले मन स्याण

ज्यों पावै त्वै चलाए जियो। एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना। राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना। जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया। राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवै मरिया। जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। गुरपूरै हर पाया हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा। दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभर राया राम राजे। हाउ मांगौ शरण हर नाम की हर हर मुख पाया। भगत वछल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया। आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया। हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा। तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा। पंथ दिशावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे। हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली। मेरा मन तन्ना माधार है हम मैं बिख जाली। जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने। मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने। हाँ मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे। गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुर के राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके। गुर तुठे हर पाया चूके तक तके। हर जन हर हर होया नानक हर इके। आसा महला चौथा हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे। धन धन वन जा रावण जह गुर शाहो सा वासे। जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे। सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वन जा रहा राम राजे। सब भांडै तुदै साजिया विच वस्त हर थारा। जो पावै भांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करै विचारा। जन नानक हर बख्शिया हर भगत भंडारा। हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे। हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो। हम मूर्ख किशु ना जान क्यों पावै पारो। जन नानक हर का दास है हर दास पनिहारो। ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम फूल विगाड़ै दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए। आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुना चलिया। जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया। जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जगे आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए। तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे। किश हाथ किसै दै किश नाही सब चलै चलाए। जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया हर

क्या की जाए, हर करता सब किश जानदा, सिर रोग हाथ दी जाए, जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजै, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगुण सियाने राम राजे, जे बारों पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाणे, हर संता नो होर थाओ नाही, हर मान निमाणे, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे हुर खाए कन्हेरी, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुरसिखा मन मिठा, हर दर गै गुरसिख पै नाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर नाम ते आवै, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेण न आवै, जन नानक हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावै, जिनी गुरमुख नाम ते आया, तिन्ना फिर बिघन न होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया, तिन्ना सुख सद होई, जिन्ना नानक सतगुर पेटिया, तिन्ना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जो भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छडाया, आसा महला चौथा, शंत कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन परदेसी वे प्या

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रमरारी सर्व सुखरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुइते कशु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकी शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो ते संग एको रव रहया, घट घट वासी आप गर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिध जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद अंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै अंदेनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खेनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जड़िए आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बणिया। मिल सखिया पुछै कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
गुण गूण गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे, भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे। सगल गुण सुग्यान पूर्ण अपने प्रपाणी, ब्रह्मंत नानक रंग राती प्रेम सही सुमाणी। सुख सोहेलड़े हर गावन लागे, साजन सरसे आड़े दुख दुश्मन पागे। सुख सहज सरसे हर नाम रहसे, प्रव्याप कृपा तहारिया। हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ नवारिया। शुभ दिवसे आए सहज पाए, सगल नित प्रभ पागे। बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे। आसा महला पंजवा, उठ मंज वटाउड़िया तै क्या चिर लाया, मुहलत पुनड़िया कित कूल लुवाया।

माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनल खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़ै नाही लै चले कत गलाव्या। हर चंदौरी देख मूठा कूड़ से जा रावया, लभ लोभ अहंकार माता गर भया समायण। नानक मिर्ग अज्ञान बिनसे न मिटाय अवन जायण, मिठे मख मवा क्यों लय उडारी। हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी, तरन दुहेला पया खिन मैं खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो, गुजा कमाणा प्रगट होवा ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभ की चरणी, कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया सा संगत आप होवाया, आप जग तराया। राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करणी। नानक नरक न जाहे कबहू, हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सवा परणा प्रभ संग सोहंती, संगे सोहंती कंत स्वामी। दिन सरैणी रावी है सा साच तार जीवा, प्रपे खर गुण गावी है। बिरहा लजाया दर्श पाया, आम्यो दृष्ट सिंचंती। बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी, मिले जिस खोजंती।

कत जीवन प्रे बिन होत, सनमुख सहबान सनमुख सहबान है, मृगे अर्पे मन तन प्राण है, ओ बेद्यो सह सरोत, प्रे प्रीत लागी मिल बैरागी, खिन रहन त्रिग तान तिस बिना, पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे, चितवंत अंदन प्रभ मना, श्री रंग राते नाम माते, पै परम दुखतिया सगल खोत, कर माया दया दयाल पूर्ण, हर प्रेम नानक मगन होत, अली अल गुंजात है, मकरंद रस बासन मात है, प्रीत कमल बंधावत आप, चात्रक चित प्यास है, कान बूंद बचित्र मन आस है, अल पीवत बिन सताप, तापा बिनासन दुख नासन, मिल प्रेम मन तन यतका नाम, सुंदर चतर सुजान स्वामी, कमन रसना गुणपना, गै पुजा लेवो नाम देवो, दृष्ट धारत मिटत पाप, नानक जंपै पदत पावन, हर दस पेख तो नै संताप, चितवो चितनाथ चितवो चितनाथ है, रख लेवो सरण्या नाथ है, मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान है, मन लुब्द गोपाल ज्ञान है, जाचक जन रखत मान, प्रभ मान पूर्ण दुख बदीर्ण, सगल इच्छ पूजंतिया, हर कंठ लागे दिन सुपागे, मिलना हां से सुहंतिया, प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल कलमल पय हान, बिनवंत नानक मेरी आस पूर्ण, मिले श्री तर गुण निधान, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, आसा महला पहला वार सलोका नाल, सलोक पी महले पहले के लिखे, टुंडे अस राजा की तुनी, सलोक महला पहला, बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस जे देवते किए, करत ना लागी वार महला दूजा, जे सौ चंदा उगवै सूर्य चढ़े हजार, एते चरण होंदिया गुरबन कोरे अंधार, महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, छुटे तिलबू वाड़ ज्यों, सुंजे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सवना, फलिए फुलिए बपड़े, पी तन विच सुवा पौड़ी, आपी न आप साजियो, आपी न रचियो नाओ, दुई कुदर साजिए करासन डिठो चाओ, दाता करता आप तू, तुस दे मैं करै पसाओ, तू जानो ई सब सह दे लै सह जिंद कवाओ, करासन डिठो चाओ, सलोक महला पहला, सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड, सचे तेरे लो सचे आकार, सचे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आख्या लख करोड़, सच्चा सब तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक साहिब ते आयन सच, जो मर जमे सो कच निकच, महला पहला।

ओंकार सच नाम जा का किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाहो सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाहा पंखी पौंदिया लैण ना साहा सूए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंदर बंद पवाए सोए पै किरत नचै सब कोए नच नच हसै चलै से रोए उठ ना जाही सिद ना होहे नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ पौड़ी नाव तेरा निरंकार है ना लै नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ै चंगा अपना करपनो निसदाई है जे जरवाना पर हरै जर विस्करेंदी आई है को रहै ना भरियै पाईऐ सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरईयत पड़ पड़ करै विचार बंदे से जे पवै विच बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूपया पार तीर्थ नावै अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सतिया मन संतोख उपजै दिनै कै विचार दे दे मंगै सैसा गुणा शोभ करे संसार।

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहना ना पायो, बिन सतगुर कहना ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। सलोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों विच जमया हों विच मुआ, हों विच दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सचियार कूड़ियार, हों च पापुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरीऐ हों विच धोवै, हों विच जाति जन सीख होवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना। हों विच माया हों विच छाया, हों मैं कर कर जन तो पाया। हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा, हों मैं हा जात है हों मैं कर्म कमाहे, हों मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हों मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए, हों मैं एहो हुक्म है पया किरत फिराहे। हों मैं दीर्घ रोग है दारू पिय समाहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया। उन्नी मंदै पैर न रखियो, कर सुकिरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला, नित देवै चढ़ै सवाया। वड्याई वड्डा पाया। सलोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता हां। दीपां लोवा मंडला खंडा वरपंडा हां। अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जाहां। सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हां। नानक जन तो पाए कै संभाले सब नाहा, जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा। सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सच्चे नाम बिनु क्या टिका क्या तग। महला पहला, लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान, लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण। लख सुरतन संग्राम रण में छुटै प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करता करना किया लिखिया आवन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहब एक तू, जिन सचो सच वरताया। जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, सलोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। नानक लेखै एक गल, होर हों मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेख किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पहरै एनस कहरै, मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता। पग उपे ताणा अपना किया कमाणा, अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, विण ना वै किश थाए ना पाई। रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जाणै फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नजर करे सो पाए, आसां देसे ते नह केवल। हों मैं शब्द जलाए। पौड़ी भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीर्त गावदे। नानक करमा बाहरे,
ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਨੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰੈਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਐ ਤੋ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ।

द्वापर रथ तपै का सत अग्यर्थ वाहो, कलयुग रथ अगन का कूड़ अग्यर्थ वाहो। महला पहला। साम कह ऐसे तंबर स्वामी, सच में अच्छे साच रह सबको।

को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाल आने दोस्ती वाडारू सोने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाओ ना थे हो महला दूजा होए ए आना करे काम आण ना सके रास जे एक याद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा वास नानक हुक्म न चलई नाल खसम चले अरदास सलोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक सा करमात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेवक कंडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया

पहर चोलना गधा नाचै पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए कने बुजन हार खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै कीस गलौरे लियावै कर कर मुसरी मंगल गावै। कछुआ शंख बजावै बंस को पूत बियाहन चलिया सोए ने मंडप छाए। रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो कीटी पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार पे लोरो लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी एको जसै द्वारा। नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा। ऐसा जोगी नौ निद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ। खिंथा ज्ञान ध्यान कर सुई शब्द तागा मथ काल पंच तत् की कर मृगाणी गुर कै मार्ग चाल। दया फाहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्नि जलावै। तिसका पाओ ले हृदय अंतर चौह जुग ताड़ी लावै। सब जो गतन राम नाम है जिसका पिंड पुराना। कहो कबीर जे कृपा तारै दे सच्चा निशाना। आसा हिंदू तुर्क कहां ते आए किन ए राह चलाई। दिल में सोच विचार गवा दे पिस्त दो जुको किन पाई। काजी तै कवन कते बखानी पड़त गुण ते ऐसे सब मारे किनहू खबर ना जानी रहाओ। सख्त स्नेहो कर सुनत करिए मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा अपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए। अर्ध शरीरी नार ना छोड़ै ताते हिंदू ही रही है। शाड़क तेव राम भज बौरे जुलम करत है भारी। कबीर है पगड़ी टेक राम की तुर्क रह पछहारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजै सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई। रे बौरे तुह करी ना रखे कोई तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो का को कवन पुरख की जोई। घट फूटे को बात ना पूछे काडो काडो होई। देहोरी बैठी माता रोवै खटिया ले गए भाई। लटछटकाए त्रिया रोवै हंस अकेला जाई। कहत कबीर।

तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हर का बिलोबना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नजर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सुकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक स्यो धुआ, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजर बाब, भूल बिगारियो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पर दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन कौ पाती तोरे, सो पाहन निर्जियो। पूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है देओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर देओ। तीन देव प्रतख तोरे, करे किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कछ तप ना कियो। तीस बरस कछ देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरे। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए।

पाट पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर।

मेरे गृह आए राजा राम पधारा रहाओ, नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोट ते तीसियो जाना, कह कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहो रे। सेजा रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जने उत मारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसरने नारायण, हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानं, साच कर हम गा

नैन देख पतंग उर्जै पासना देखै आग, काल फासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर तरन तरन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुती नाही कोए। आसा जौ मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्व भूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ, साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

जौ तन चीरा अंग न मोरो, पिंड परे तो प्रीत न तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई आसा। कोरी को कहूं मर्म न जाना, सब जग आनत ना होता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै ताती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सुते सुत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपतीने कछु ना होवे, ना ही राम एना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा रहाओ। जल कै मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नी आवे। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, ता सगली सैन तराई। दिन सनारैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसै निरंकारा। कह कबीर नरत सहते आवो, बावरिया संसारा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा बाणी श्री नाम देव जी की। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र विचित्र बिमोहत, बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ, भराई ले उदक। ठाकर कौ स्नान करो, ब्याह लीस लख जी। जल मैं होते, बीठर पहला काय करो।

आनीले दूध रिदाई ले खीरंग, ठाकर कौ नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। रंग नरंगो सीवन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीनसी, आसा ते ना भावसी, रामा भगतै चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरै गारे, संसार सागर बिखै को बना, झूठी माया देख कै भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुर उपदेश पहला, संता कै प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोखया साध जा मैं, ताकी केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलाय उपाए। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव, संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा, सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन, तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ। संपत विपत पटल माया तन, ता मैं मगन होत ना तेरो जन, प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर,
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤ।

देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोबन लगता है। मान बच करामो रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बनियाई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख ब्रह्मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया, ध्यान मान मन एक मये। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके अछली प्रपै जानिया। धनै तर पाया तरणी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवां गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग, नाम देव मन लीना। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीना रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास ढोवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गणिया। एह बिद सुन कै जट रो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की ना, दयाल दमोदर बिबै ना जानस कोई। जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो, करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वारा। दे आहार अग्न में रख, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर, समय देख मन माही। पाखण कीट

आसा सेख फरीद जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद। दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुमा पैर मूह। तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, सेख फरीद खैर दीजै बंदगी। आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे, एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे। आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां, मनोम चिंदड़ियां रहाओ। जे जाना मर जाइए घुम ना आईए, झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए। शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया, कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया। सेख है आती जग ना कोई थिर रया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां, सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो। जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भाउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद। राग गुजरी महला पहला, चौप दे कर पहला। तेरा नाम करी चन नाठिया, जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रलै, कट अंतर पूजा होए। पूजा कीचे नाम ते आईए, बिन नावे पूजना होए रहाओ। बाहर देव पखाली है, जे मन तो वै कोए, झूठ लह जियो मांझी है मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया, खड़ खावे अमृत दे। नाम विहुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। नेड़ा है दूर ना जाने आओ, नित सारे संभाले। जो देवे सो खावना, कहो नानक साचा है। गुजरी महला पहला, नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे। वेद पड़े मुख कंठ सवार, ताको अंतना जाई लखना, आवत जात रह गोबार। प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार, जाकी भगत करे जन पूरे, मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ। राव सस दीपक जाके तिर पवन, एका ज्योत मुरार। गुरमुख होए सो अहिंस निर्मल, मन मुख रहने आधार। सिद्ध समाध करे नित झगरा, दोह लोचन क्या हेरै। अंतर ज्योत सब तुन जागै, सतगुर चगर नवेरै। सुर नर नाथ बेअंत जोनी, साचै महल अपारा। नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग अवेहा जीवना, जित हर प्रीत ना पाए। जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेवी है मना, जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजै। अवर विसर सब जाए, हर सेती चित गह रहै। जरा का पौ ना हो वही, जीवन पदवी पाए रहाओ।
गोबिंद प्रीत सियों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल होवा ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है जे लोचे सब कोए कूड़े की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आग्या जियो धरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुरप्रसाद मेरा मन पीजै एहा सेव बनी जियो रहाओ हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सखाई हर बिन होर रास कूड़ी है चलद्या नाल ना जाई हर मेरा तन मेरा साथ चल है जहां हो जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा होवा कहना कछु ना जाई गुजरी महला तीजा जुग माहे ना

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, तां का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसा कोसा। तिस पाछा बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन में सिवरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंतना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खट करमा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा तारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी। रहाओ शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनान हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी। हर हर तार पुराना, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नमनिध पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे, लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जा का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत संग

मन को एह उपदेश दृढ़ावै सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस भेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई मिल साधु हर जस गावै नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवां खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाय ना करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो तरी। त्याई अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाए सुमाए।

सास सास तेरा नाम सुमाराओ तुम ही को प्रव्याही, नानक टेक पही करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हरस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवे तो पाए। अब मोहे आए परयो सरनाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करतै, जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाईऐ, जमकी त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंत सेती कर जाइऐ। जा ते काल न बिरथी जाइऐ, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा ध्याइऐ रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास है पैज रखाई है। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता, भगत परे पंडार, जाकी सेवा निफल ना होत खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दै, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभु प्राण आधार, होए सहाय जिस तू रखै तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर, अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै,

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछी है जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आदि अंते मध्य।

तार सतगुर प्रसाद आराध श्री तार सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड़ जम दूत फास रहाओ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरन परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख्त लाहा चार बेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात कर अंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्व जोत निरंजन संभू छोडो बोझ जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियाले सो वै जे जाने रोगी तिस कारण कामना तंदा नाही तंदा गिरही जोगी काम क्रोध अहंकार तजियाले लोभ मोह तिस माया मन ताते अवगत ते आया गुरप्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियाले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मदत तासर साधं जगत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनै ना गर्म बेख तज अमृत पी आया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाईए तेरी भगत परे भंडार रहाओ सुन समाद रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार सर्ब लोचन शब्द दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नजर

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचै सकत निवारै, शिव कर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचै टापै अवरो गावै, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचै खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचै, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरै ता शब्द विचारे, ता सच पावै कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिया, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचै जो तुद पावै, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहज सुख पावै, जिन को नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सकै, जो बालक खीरे आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन को कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै। अंदन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वरतै, एका जोत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी। मन मुख दुबदा दुरमत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावै, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवै, ओह मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है सब गल तारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूद खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस तारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिया, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिया। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिया। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिया। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बुलावै त्यो बोलै स्वामी। कुदरत कमन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवां कर चौथा। एको ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁੰਡਿਤ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਿਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਨੀ ਧਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਧ ਮੰਤ ਛੇ ਦੇਹ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ

तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिना ना चीर खल मूड खल मुगत मूड कटाक श्री धर पय गुणमतीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परमहंस रीत देत दर्शन सरवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार गुजरी की वार महला तीजा सकंदर ब्रह्म की वार की तुनी गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा एहो जगत ममता मोवा जीवन की बिद नाहे गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाए नानक नदरी मन वसै गुरमुख सही समाए महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार दूजे पाए सुते कवे ना जागे माया मोह प्यार नाम ना चेतै शब्द नाम विचार है एहो मनमुकाया चार हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया नानक जम मार करे खुवार पौड़ी अपना आप उपायोन तदो होर ना कोई मता मसूरत आप करे जो करे सो होई तदहो आकाश ना पाताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई जो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर ना कोई श्लोक महला तीजा साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए ओह अवाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए सदा सदा सो सेवी है जो समय रह समाए अवर दूजा क्यों सेवी है जमै तै मर जाए निहफल तिनका जीवया जे खसम ना जा।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हम मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया, महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा, श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाएं दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, महला तीजा, एहो मन के तड़िया, जुग भरमिया, थिर रहे ना आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलियो पाए, जा हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरे ना जाए, पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी, श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह बाणी सच है, सच मिला वाहोए, नानक वाह वाह करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए, महला तीजा, वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रमिलया आई, वडभागिया वाह वाह मोह हो कढ़ाई, वाह वाह करै सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाह कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई, पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ को सत्य अभिमानी, परम भूले नजर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी, श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए, वाह वाह करत्या हर स्यों लिवलाए, वाह वाह करमी बोले बोलाए, वाह वाह करत्या सोभा पाए, नानक वाह वाह सत्र जाए, महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है,

हर पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नकन टूटे कंधन, कोदो को पुस खई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया, अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो, अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो, एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गत बिन रैन बिहाई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा।

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तै उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किसह पूजो दूजा नजर न आई। एक है पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछै पार मलो। परम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझिया, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं किन्या परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्बाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काए फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणं हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवपूत सर्वगतं एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्र

पित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाल चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आ

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता, अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता, सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है, अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है, टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है, संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप होई है, उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया, हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा, अपने सतगुर पै बिनो कहया भय कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ, हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया, पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ

जब चितवाओ तब तुहारे, उन समार मेरा मन साधारे, सुन गावो गुर बचनारे, बल बल जाओ साध दरसारे, मन में राखो एक या सारे, नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावां। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए। एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईए। राग देव गंधारी महला पंजवां घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सदी संगे अंदन गुर मिल गाए। रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचै भ्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछै। रहाओ किस हौ सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै। साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांछै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै। आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछै। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सबहू मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो। दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुले समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार। रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत। एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले। प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा आना।

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार, बिन संजम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावै गो, हर जी को द्वार। मिल संगत तज अभमान, कहो नानक पाए है परम निधान। देव गंधारी पंजवा, जानी ना जाई ता की गात रहाओ। कह पे खारो हाँ कर चतराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात। गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक। चतुर्वेद उचर्द दिन रात, अगम अगम ठाकरे आगाद। गुण बेअंत बेअंत पन नानक, कहन ना जाई परै परात। देव गंधारी महला पंजवा, त्याय गाए करने हार। पौ नाही सुख सहज आनंदा, अनक ओही रे एक समार रहाओ। सफल मूर्त गुर मेरे माथे, जत कत पेखो तत साथे। चरण कमल मेरे प्राण आधार, समराथ्या था बड़ा प्रम मेरा। कड़ कड़ अंतर साहेब नेरा, ताकी सरन आसर प्रभ नानक। जाका अंत ना पारा वार, देव गंधारी महला पंजवा। उल्टी रे माने उल्टी रे, सागर से कर उल्टी रे। झूठ है की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे। साकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर पर मंदर राखेओ, जो पैसा कालू खीरे। दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिगुटी रे। मांगो दान किरपाल किरपा निद, मेरा मुख साकत संग ना जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पग्गा हेठ रुलसी रे। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समर्थ पंथ बिठले, हों बल बल जाओ। गावन पावन संतन तोरे, चरण उमा कह पाओ। रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं, एक अनंत अनुपैठाओ। रिद सिद्ध निद करतल, जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ। दया मया कृपा नानक कहो, सुन सुन जस जीवाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग देव गंधारी महला नावा, यह मन नैक ना कहो करै। सीख सिखाए रहे हो अपनी सी, दुर्मत ते ना टर रहाओ। मद माया कै पयो बावरो, हर जस नह उचरे। कर पर पंच जगत को डहकै, अपनो उदर भरै। सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान धरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नावा, सब किछ जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंदप, आरफुन गृह की नार रहाओ। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार। आदि करी को न राखै, करते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते हो ते उधार। देव गंधारी महला नावा, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत रहाओ। मेरो मेरो सबै कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत। अंतकाल संगी नह को, ए अचर जह रीत। मन मूर्ख अजू न समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक पौजल पार पर, जौ गावै प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद।
ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਚੌਪਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ਭਯੰਗਨ ਬਸਰੀਆ ਅਨ ਕਿਉ ਪਰੀਆ ਤੋ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜਰੀਆ ਰਹਾਉ ਮਿਥਨ ਮੋਹਰੀਆ ਅਨ ਕਉ ਮੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਨ ਕਿਰੀਆ ਸਗਲ ਬਟਰੀਆ ਬਿਰਖ ਇਕੱਤਰੀਆ ਬਹੁ ਬੰਧੈ ਪਰੀਆ ਥਿਰ ਸਾਹ ਸਫਰੀਆ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਕੀ ਗਤਨੈ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ ਅਰ ਬਹੁ ਲੋਕ ਸਿਆਨੇ ਰਹਾਓ ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖ ਨਾਵੈ ਜੈ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਆਪੈ ਦੇਖਣ ਹਾਰਾ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਅਗੰਤ ਅਪਾਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹ ਸਭ ਜਗ ਪਰਮਾਇਓ ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਚਰਨ ਤਾਹੇ ਚਿਤ ਲਾਇਓ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ।

एक जन एक मन राम के रंग मातिया लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा बिनवंत नानक जिन नाम पल्ले सही सच्चे साहा नानक सोई सिमरिया हर जियो जा की कल तारी राम गुरमुख मनो न विसरै हर जियो करता पुरख मुरारी राम दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रै निड़िए प्रे प्रेम लगा कर दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ के चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड़ पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वट पागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाने बिनवंत नानक मने छपाई हर मिले पुरख चराने तित ग्रह सोहलड़े कोड नंदा मानता नु रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद भक्त उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टे जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार किरपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावे संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावे खसम पावे हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वट भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कले साधु करे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना अमे सरोवर पियो, अमे सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संते संग मिले जप पूर्ण कामा राम, सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण हार निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से दे आवे। तार वार विशुने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लू करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। इक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे अकिरत कान।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्य सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्तै अंध। महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए। बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी। जदों आपे थाट किया बै करतै तदों पुछना सेवक बिया। तदों क्या को लेवै क्या को देवै जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया। आप निरंकार आकार है आपे आपे करै सोथिया। सलोक महला तीजा। गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा। अंदन सहज प्यार सदा आनंद गावै गुण साचे। अर्ध उर्द उरतार अंतर प्रीतम वसिया। तुर कर्म लिखिया करतार नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा। कहया कथया ना पाईऐ अंदर रह सदा गुण गाए। विण कर मैं किने ना पायो भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी। आपे वेद प्राण सब शास्त्र आप कथा आप भीजै। आपे ही बै पूजे करता आप पर पंच करी जै। आप निर्विर तो आप निर्विरती आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए आप अलिप्त वर्ती जै। आपे दुख सुख देवै करता आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा। सेखा अंदरों जोर छड़ तू पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किने ना पायो पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा। मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे अंते होए सब शार। कर्म धर्म सुच संयम करे अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै सो थाए ना पवै दरगह होए खुआर। पौड़ी। आपे खानी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे। आप समुंद आप है सागर आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे। आपे पवजल आप है बोए था आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। नाम पदार्थ पाई है अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटी है हम मैं ममता जाए। उत्तम पदवी पाई है सच्चे रह समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा। नाम रत्ता सतगुरु है कलयुग बोइथ होए। गुरमुख होवै सो पार परै जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए। नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी। आपे पारस आप तात है।

कार्य अपना तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लगत रह संसारा, गुरमुख ज्ञान रते जुग अंतर, चूकै मोह गुबारा, सतगुर सेवा ते निस्तारा, गुरमुख तरह संसारा, साचै नर ते बैरागी, पाए मोख द्वारा, एको सच वरतै सब अंतर, सबना करे प्रतपाला, नानक इक्स बिन मैं अवर ना जाना, सबना दीवान दयाला, अवढांस महला तीजा, गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान, गुरमुख साचै लगै ध्यान, गुरमुख मन मेरे नाम संभाल, सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ, गुरमुख जात पात सच सोए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द सच करनी सार, गुरमुख नानक परवार साधार, वढ़ंस महला तीजा, रसना हर साध लगी सह सुभाए, मन तृप्तिया हर नाम ते आए, सदा सुख साचै शब्द विचारी, अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ, अखी संतोखिया एक लिव लाए, मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए, देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए, नाम परमल हृदय रया समाए, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग, वढ़ंस महला तीजा, पूरे गुरते नाम पाया जाए, सच्चा शब्द सच समाए, ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ, गुर कै शब्द विचो मैल गवाए, निर्मल नाम वसै मन आए, परमे पूला फिर संसार, मर जन्म जम करे खुवार, नानक सेवड पागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन वसाया।

जाए रहाओ, हमे सब शरीर है, हमे उपत होए, हमे वड्डा गुबार है, हमे विच बुझ न सके कोए, हमे विच भगत ना होवई, हुक्म ना बुझिया जाए, हमे विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए, नानक सतगुर मिलिया हमे गई ता सच वसिया मन आए, सच कमावै सच रहै सच्चे सेव समाए, वडहंस महला चौथा कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर, मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावै मेरा प्रीतम, हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ, मैं अवगण

माया हाँ कर कर थाका उपाप बहुतेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी जो पिर भावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ तुझे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मंत्र आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ांस।

सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब पाईया ने आप आपे नजर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब यो पाई है आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जामना एक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सहे समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता साचा

सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम आप आप संदूरै श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी बिरवंत नानक दास हरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिरकै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सच्चै शब्द मिल रहीए मुइये फिर रावे पाए प्यारे सच्चै पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो न्यो रिचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचै साहे सवारी निर्गुण मंत्रिये पिर देख अधूरे राम गुरमुख जिनी रावया मुइये पिर रव रया पर पूरे राम पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे नानक कामण सा पिर भावै सबदे रहै हदूरे सुहागणी जाए।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिउं रलिया माणै सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाणै कामण वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावै सदा मुइये नहीं कर वासा पाए नहीं कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी परली आला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिए लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजय हर रा विजय अंधन नाम वखाणै गुण संग्रह अवगुण विकणै आपै आप पछाणै गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए

मनमुख खेती वणज कर थाके, तृष्णा भुख न जाए। नानक नाम बीज मन अंतर, सच्चा सब सुवाए। हर वापार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम। गुरमती मन नहीं कर वसिया, सच्चा शब्द बैरागो राम। मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साच रते विचारी। नाम बिना सब जग बौराना, शब्दे हमे मारी। सच्चा शब्द लाग मत उपजै, गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिलै पौ पंजन, हर रावै मस्तक पागो। खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वड्याई राम। गुरमति हुक्म बुझिए, हुक्मे मिल मिलाई राम। हुक्म मिलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुरते पाई, सच सवरण हारा। पौ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन, अगम्या गोचर हुक्मे रहा सुमाई। वढांस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो। अपने घर तू सुख वसै, पोहे ना सकै जमकाल जियो। काल जाल जम जोहे ना सकै, सचै शब्द लिवलाए। सदा सच रता मन निर्मल, आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विगुति, मनमुख जोही जमकाल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। मन मेरे आ अंतर तेरा निदान है, बाहर वस्त ना पाल। जो पावै सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सिखाई।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मन मुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेव ने अपना से जनवट पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वर यामना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पिए पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरिजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मन लागै।

जिनी दर्शन जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम, तेने फल तेने फल जन्म सब बिरथा गवाया राम। ने फल जन्म तेन बिरथा गवाया, ते सागत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शना करी आओ, जिनी हर हर नाम ना त्याया, जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया। हम चात्रक दीन हर पास बेनंती राम, गुरमेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करै भक्ति राम। हर हर सतगुर करै भक्ति, जा हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुर

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, बड़हंस महल्ला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, साबिन से हो मैं पापा राम। जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पै शरीरा। अंदन सह समाध हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम, मेरे मन पाया। हर तार

तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।